होगा शाम 6:24 पर। प्रेम की मूरत, भक्ति का भंडार, राधा रानी लाए आपके जीवन में खुशियों की बहार। रेडियो विस्ता के सभी प्यारे श्रोताओं को राधा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।

सज्जनता, शिष्टाचार और व्यवहार कुशलता के लिए जरूरी है। ये इंसान के लिए प्रगति के मार्ग खोलता है।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

दोस्तों भोजन एफएम नमत आशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हूं भोजन रूजियो पनिन पसंदीद बात।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

पेश है कार्यक्रम इनसे मिलिए, एपिसोड 6। आज के मेहमान हैं श्रीमती कुलविंदर कौर, प्रस्तुतकर्ता भारत सोपोरी।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी, हाजिर हूं कार्यक्रम इनसे मिलिए का एपिसोड नंबर 6 के साथ। आज के इस कार्यक्रम में बात करेंगे भक्ति की, श्रद्धा की, सुगम संगीत की। पर पहले आपको बताता हूं गुरु नानक देव जी के बारे में। गुरु नानक देव जी का बाल्यकाल से ही ईश्वर की भक्ति में मन लगता था। वो हमेशा ही लोगों की सेवा करते थे और संतों से काफी प्रभावित थे। अपने पिताजी के कहने पर उन्होंने पारिवारिक जीवन तो बसा लिया, परंतु ज्यादा दिन तक उसमें नहीं रह सके और 37 वर्ष की अवस्था में लोगों को ईश्वर और धर्म के प्रति उपदेश देने निकल गए। आगे चलकर उन्होंने 15वीं सदी में केवल एक ईश्वर और गुरुओं पर आधारित सिख धर्म की स्थापना की। ये मैंने आज गुरु महाराज जी के बारे में इसलिए बताया क्योंकि आज जो हमारे आमंत्रित मेहमान है वो हमें इस बारे में और ज्यादा तरीके से बता पाएंगे और सुनाएंगे हमें शब्द और गुरबानी। यह एक सशक्त महिला है जो दवाई से लोगों के तकलीफों को कम करती है, अपनी जादुई आवाज से मरहम लगाती है और ज्यादा समय प्रभु चरणों में होती है।

0: इस सुनहरी आवाज के जो मालिक है वो आज हमारे आमंत्रित मेहमान है। तो आइए गुरु महाराज जी का नाम लेके स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान श्रीमती कुलविंदर कौर जी का, जो अंबाला सिटी से है। स्वागत अभिनंदन स्टूडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: थैंक यू सो मच भारत जी, आपने इस नाचीज को इतना काबिल समझा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले भी हमने दो शोज किए, यहाँ स्टूडियो में आके ये शो करने में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर स्वागत। कुलविंदर कौर जी, हम आगे चलते हैं, आप कृपया अपनी इंट्रोडक्शन खुद ही दें ताकि हमारे श्रोता आपसे परिचित हो जाएं।
1: जी, मैं कुलविंदर कौर, सीनियर फार्मेसी ऑफिसर, प्रेजेंटली वर्किंग इन जनरल हॉस्पिटल अंबाला सिटी। बेसिकली मैं करनाल से हूँ, माय बर्थ प्लेस इज सोनीपत।
0: जी,
1: तो मेरे फादर जो थे वो गवर्नमेंट जॉब में थे, सोनीपत मेरा बर्थ हुआ। उसके जैसे ही मेरा जन्म हुआ तो उसके बाद हम लोग करनाल शिफ्ट किया हमने, और हम सेटल हुए। जैसे जैसे हमने अपने घर का माहौल देखा, अपने मम्मी को देखा बड़े हुए, हम मम्मी को देखा गाते हुए, तो वहीं से हमें शौक पैदा हुआ गाने का। मेरी मम्मी जो थी वो एक रेडियो सिंगर थी और वो रेडियो स्टेशन पे गाती थी
0: जी।
1: और वो गुरबानी भी गाती थी। शुरू से ही हम लोगों ने उनको देखते देखते हारमोनियम प्ले करना उन्हीं से सीखा, गाने का शौक पैदा हुआ, उन्होंने भी हमें मोटिवेशन दी और तभी से हमें गाने का इंटरेस्ट पैदा हुआ। और उसके साथ साथ पढ़ाई में भी काफ़ी मेरा शौक था, एकेडमिक्स में मैं बहुत अच्छी थी। पूरी स्टडीज़ में मैंने अपने स्कूल में, कॉलेज में, आगे पोस्ट एजुकेशन में जो भी मैंने आज तक किया, सभी चीज़ों में मैंने अपना स्कॉलरशिप गेन किया। और बाय द गॉड्स ग्रेस मुझे गवर्नमेंट जॉब भी अपनी मेरिट पे ही मिली।
0: आपके प्रोफेशन की बात तो बाद में करेंगे, पहले आप के प्रभु और गुरु महाराज जी के लिए समर्पण की बात करते हैं। जब आप शब्द या गुरबानी गाते हैं तो कितना सुकून मिलता है?
1: देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो फीलिंग्स हैं जो एक्सप्रेस की नहीं जा सकती। बहुत लोग कहते हैं कि ये कोई एज नहीं है आपके गुरुद्वारे में भजन गाने की, मैं क्योंकि मैं बहुत छोटे होने से इस तरफ मेरा रुझान है, तो मैं शुरू से ही गुरबानी गा के जो मुझे एक सेटिस्फेक्शन, इंटरनल सेटिस्फेक्शन जो मुझे मिलती है वो मुझे कहीं और नहीं मिलती। ठीक है, सब चीज़ें रिक्वायर्ड है लाइफ में, सभी चीज़ों की एक अपनी प्लेस है, किटीज, सोशल सर्कल्स, क्लब्स, ये सब कुछ है, पर जो चीज़ मुझे गुरुद्वारे जाके गुरबानी गाने में मिलती है वो सुकून जो है वो वर्ड्स में मैं बयान नहीं कर सकती। मतलब मुझे इतना ज़्यादा पैशन है गुरबानी गाने का कि अगर आप मानिए गुरुद्वारे में एक भी पर्सन नहीं बैठा हो
0: तब भी
1: मैं गा सकती हूँ, क्योंकि मुझे गाती हूँ तो मेरे जो हाथ हैं वो ऐसे स्टक हो जाते हैं कि मुझे लगता है कि भगवान के साथ बहुत अटैच्ड हो जाती हूँ मैं, गुरु महाराज जी के साथ, जैसे वही सुन रहे हैं मुझे।
0: यहाँ मैं एक प्रश्न और करना चाहूंगा आपसे, जब आप गुरुद्वारा जाती हैं तो आप केवल गुरबानी गाती हैं या वहाँ सेवा भी करती हैं? तो जब हम गुरु महाराज के घर में पहुंच जाते हैं तो हमारा मन, हमारी सोच गुरु महाराज के चरणों में ही जाती है, तो किस तरीके का काम आप वहां जाके करती हैं?
1: देखिए, जो अब हम छोटे थे, अभी हर जगह हमें गाने का मौका नहीं मिलता
0: जी।
1: हम किसी भी गुरुद्वारे में जाते हैं, कई बार आगे जो वहाँ की कमेटी होती है उन लोगों को नहीं पता होता कि मैं गाती हूँ, तो हम वहाँ बेसिकली सेवा के पर्पज से ही जाते हैं
0: जी।
1: और जाके हम यही कोशिश करते हैं कि किसी तरह से भी 2 मिनट की सेवा हो जाए, बेशक वो एक झाड़ू की हो जाए, बर्तन धोने की हो जाए, 5 मिनट भी हमें सेवा का मौका मिल जाए तो हम उसमें अपने आप को बहुत लकी फील करते हैं। और फिर ये जो गाने की बात है, ये तो हमें उनको बताना पड़ता है। अब अम्बाला में तो करनाल में सभी जगह पता है कि मैं गाती हूँ, बाकी सिटीज़ में लाइक नाडा साहिब गुरुद्वारे हैं या पंजोखड़ा साहिब है, यहाँ इधर यमुनानगर साइड पौंटा साहिब गुरुद्वारा, तो वहाँ मैं गई और मेरे से रहा नहीं जाता कि मैं ना बताऊँ। तो किसी ना किसी तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गा लूँ, तो फिर मैं बात कर ही लेती हूँ किसी ना किसी तरह से कि मैं शबद कीर्तन करना चाहती हूँ। तो फिर मुझे भगवान की इतनी कृपा होती है कि मुझे 10-20-15 मिनट्स मिल जाते हैं और मैं बड़ा लकी फील करती हूँ। जब तक मैं नहीं गाती, मेरा ध्यान वहीं अटका रहता है कि मुझे गाना है, गाना है।
0: कुलविंदर जी, हमारे लिए भी जिस जगह पर हम बैठे हैं, ये मंदिर है, गुरु महाराज जी का घर है, तो मैं तो चाहूंगा कि यहाँ भी आप एक शब्द या गुरबानी हमें सुनाएं, ताकि हमारे श्रोता भी आपके उस फील को फील कर पाए।
1: अब प्रेजेंटली जो है, मैं सभी गुरुद्वारों में बच्चों का एक कैंप लगाते हैं हम, गुरबानी कंपटीशन, गुरबानी सुनाओ इनाम पाओ। इसलिए ये हमने रखा हुआ है कैंप के, कोई भी बच्चा आए, ये नहीं कि गुरुद्वारे आए, मत्था टेका, प्रसाद लिया, चले गए। जब तक हम बच्चों को शुरू से ही उनका बेस नहीं बनाएंगे गुरबानी की तरफ, तो हम उनको बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें बताते हैं जो हमने पैम्फलेट्स बनवाए हुए हैं, हम उनको वो देते हैं फ्री, और उनके गुरबानी की बुक्स देते हैं, छोटी छोटी बुकलेट्स बनवाई हुई हैं हमने, वो उनको हम देते हैं ताकि वो उससे लर्न कर सकें। उसके बाद हम उनको टाइम देते हैं कि आप नेक्स्ट वीक सुनाइए हमें, जो ऑन द स्पॉट सुना दे, उसे हम वहीं कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, कोई मेडल या कुछ दे के उसे हम ऑनर करते हैं। बच्चे इसी तरह से मोटिवेट होते हैं और नेक्स्ट टाइम आने के लिए उनके मन में एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है,
0: और साथ में फिर अपने संस्कारों के साथ भी वो जुड़ते हैं, आने वाले दिनों में जब हम उनको सिखाएंगे तो आगे भी वो अपने बच्चों को और अपने जो समाज है, सोसाइटी है, उनको भी सिखाएंगे।
1: हमें लगता है कुछ लोग हाथ से सेवा कर सकते हैं, कुछ लोग गा के कर सकते हैं, कुछ लोग किसी को एक कहते हैं कि एक अगर आप गुरबानी का एक पेज भी सुना दो या सिखा दो, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। तो अलग अलग तरह की सेवा होती है, तो भगवान हमें किसी काबिल समझे, हम सोचते हैं यही कर सके तो ये भी बहुत है हमारे लिए। तो हम ये चाहेंगे कि बच्चे अपने सिख हिस्ट्री के साथ ज़रूर जुड़े रहें। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़रूरी आनी चाहिए
0: जी।
1: तो मैं ये चाहूँगी कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को घर में, बाकी चीज़ें हम एक देते हैं ना, टेबल मैनर्स देते हैं, एटिकेट सिखाते हैं, दूसरों से कैसे बात करनी है, उनका नॉर्मल बिहेवियर के बारे में सिखाते हैं, तो हमें अपना कुछ भी करते हुए, लाइक हम बच्चे की उनको काम कर रहे हैं, उनको नाश्ता दे रहे हैं, कुछ करते करते भी छोटी छोटी चीजें उनको सिखा दें तो वो उनको लर्न हो जाती
0: है, ताकि बचपन से ही उनका जुड़ाव उसके
1: उस
0: साथ
1: तरफ हो जाए
0: और फिर दिलचस्पी बढ़ने के बाद वो फिर खुद भी उसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं।
1: ऐसा कहते हैं कि बच्चे वो नहीं सीखते जो हम उनको सिखाना चाहते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो वो देखते हैं कि पेरेंट्स हमारे क्या कर रहे हैं।
0: बहुत खूब।
1: तो अगर हम ही इस तरफ नहीं होंगे, ठीक है मैं ये नहीं कहती कि आप बाकी कुछ चीज़ें नहीं कीजिए, आप सब कुछ कीजिए, पर जो देखिए लास्ट जो हमें एक आत्मिक शांति तो चाहिए ही चाहिए,
0: उसके लिए
1: तो हमें भगवान के पास आना ही पड़ेगा। आप कितने आप पैसे वाले हों, कितने आप किसी पोस्ट पे हों, कोई आपकी हाईली क्वालिफाइड है, हाईली डेजिग्नेटेड है, पर लास्ट जो आपको पीस ऑफ माइंड है वो आपको यही मिलेगा आपको आगे। तो क्यों ना हम शुरू से ही इस तरफ थोड़ा सा तो एटलीस्ट रहें,
0: ध्यान दें।
1: इसी के साथ हम छोटा सा एक शब्द गाते हैं
0: जी।

0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपने प्रोफेशन और पैशन का समन्वय कैसे बनाते हैं?
1: देखिए, लाइफ का मुझे लगता है दूसरा नाम ही बैलेंस है
0: जी।
1: और अगर हम नहीं बैलेंस बना के चलेंगे तो कहीं ना कहीं डोल जाएंगे। तो एटलीस्ट हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अपने लिए टाइम कैसे निकालना है। लाइफ में ना सभी को ऑलमोस्ट बहुत काम है, आजकल इतना हेक्टिक शेड्यूल है सबका, किसी के पास अपने लिए भी टाइम नहीं है
0: जी।
1: और बस यही मैनेज करना आना चाहिए। यही मैनेज करना आ गया तो मुझे लगता है कि एक स्मूथ लाइफ निकल जाती है। इसी तरह से मैं सबका अपने फैमिली में सबका देखते हुए, अपने बड़ों का घर में, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरे बच्चे, हस्बैंड, सबको देखते हुए, सबका इक्वली ध्यान रखते हुए, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए मेरे शौक की वजह से या मेरे टाइम ना देने की वजह से, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, इसको देखते हुए मैं मैनेज करती हूँ। अगर मुझे गुरबानी करनी है तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के करूँगी। ऐसा नहीं करती कि मैं ब्रेकफास्ट का टाइम होगा और मैं गुरबानी में गुटका लेके बैठ जाती हूँ और मैं 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, किसी भी टाइम उठ के मुझे अपना करना है तो करना ही है, कैसे भी कर लूँगी मैं। लेकिन बच्चों को टाइमली भेजना, बड़ों को चाय पानी कुछ भी देना है, दवाई देनी है, कहीं लेके जाना है उनको, कुछ भी करना है, तो मैं उसमें बिल्कुल नेग्लिजेंसी नहीं करती। इसी शायद इसी वजह से मुझे अभी थोड़े दिन पहले लास्ट जी टीवी से एक सुपरस्टार नू का अवार्ड मिला
0: जी।
1: जिसमें यही था कि अपनी फैमिली और प्रोफेशन को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि नू मींस डॉटर इन लॉ। बेटियां तो कहते हैं सभी की लाडली और सभी की सियानी होती हैं, बेटियां तो सबको ही सियानी लगती हैं, पर नू किसकी सियानी है ये मैटर करता है। तो मुझे सुपरस्टार नू का अवार्ड इसलिए मिला कि मैं अपनी इन लॉज फैमिली को भी इक्वली सेटिस्फाइड और हैप्पी रख पा रही हूँ।
0: आपकी बात को मैं रोक लेता हूँ, विराम देता हूँ। मैं अपने सुनने वालों को, अपने श्रोताओं को ये कहना चाहता हूँ कि आपके लिए भी अब ऑप्शन ये है कि आप अच्छी नू बन के दिखाइए और आपको भी इस तरीके से ही समाज में हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं उनमें आपको इनाम दिया जाएगा, उनमें आपकी प्रशंसा होगी। तो ये हमारे लिए कुलविंदर जी ने आज एक और मापदंड बना लिया इस कार्यक्रम के दौरान। साथ में जैसे आपने कहा कि आप हर तरीके से अपनी एडजस्टमेंट और बैलेंस करते हैं, उसमें क्या परिवार का सपोर्ट भी जरूरी है, उतना ही जरूरी है?
1: बिल्कुल। देखिए, अकेला तो पेड़ भी कहते हैं ना, कि अगर अकेला पेड़ भी हो तो वो भी सूख जाता है।
0: जी जी।
1: तो वो अगर साथ 2-4 पेड़ और होते हैं ना तो वो हरे भरे खिले खिले रहते हैं। साथ तो चाहिए ही चाहिए, पार्टनर का साथ चाहिए, फैमिली का चाहिए, और फिर जैसे जैसे डे बाय डे हम बड़े होते हैं तो हमें बच्चों का साथ चाहिए, क्योंकि सभी के साथ से ही हम एक बैलेंस्ड लाइफ जी सकते हैं।
0: जी।
1: मुझे लकीली बहुत अच्छी फैमिली मिली जिन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया और हर स्टेज पे मुझे कभी भी प्रोफेशनली या पर्सनली किसी भी तरह से मुझे कभी भी उन्होंने डीमोटिवेट नहीं किया, कुछ करने से, आगे जाने से, कहीं बाहर जाने से, कोई प्रोग्राम्स हैं, इवेंट्स हैं, कहीं भी जाने से उन्होंने मुझे कभी भी नहीं रोका, रादर मेरी हेल्प की। और मेरे साथ भी जाते हैं कुछ जगह, तो वो मेरे साथ जाते भी हैं जहाँ जा पाते हैं। बाकी फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं तो नहीं भी जाते।
0: हाँ जी,
1: नहीं हो पाता।
0: इसके साथ ही जुड़ता हुआ एक क्वेश्चन और मैं पूछूंगा, आपका प्रोफेशन इस टाइप का है कि कई बार बहुत ज्यादा समय आपको अपने काम पर देना पड़ता है। जैसे 2 साल पहले कोविड का टाइम आया था, तो मैं चाहता हूं कि उस टाइम आपने कैसे मैनेज किया, क्योंकि उस समय हालत ये थी कि आप जब हॉस्पिटल जाती हैं या आप जॉब पे जाती हैं तो आप एकदम फिर परिवार सदस्यों से भी नहीं मिल सकती है, तो कैसा वो दौर था? 2 चीजें मैं जानना चाहूंगा कि लोगों की स्थिति क्या थी और आप जो लोगों की मदद करते थे उनकी स्थिति क्या रही उस समय।
1: जी बिल्कुल। कोविड तो हम लोगों की लाइफ में एक ऐसी स्टेज थी जो हमें बहुत कुछ सिखा के गई है। अगर हम सीखना चाहें तो, क्योंकि इस प्रोफेशन में ना कहते हैं पंजाबी में नाले पुन ते नाले फलियां। देखो सैलरी तो हमें मिली मिल रही है
0: जे जे।
1: पर उसके साथ साथ ना हम एक पुण्य भी कमा रहे हैं। वहां पे जो भी आते हैं, ये तो आपको भी पता है कि हॉस्पिटल में कोई खुश बंदा तो आता नहीं, हैप्पीली तो आता नहीं कि भी चलो घूम के आते हैं हॉस्पिटल। जब तक वो कोई प्रॉब्लम में ना हो तो कोई भी हॉस्पिटल में आना चाहता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी मदर मुझे सिखाती होती थी कि हॉस्पिटल में ना अगर हम अपने आप को देखें कि आज हम लाइन में खड़े हैं, एटलीस्ट आपको कोई ये बता दे कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपने,
0: उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए।
1: जी, एटलीस्ट आपको कोई ये बता दे कि अगला स्टेप क्या करना है, आपने जाना कहाँ है, कोई रूम नंबर बता दे, कोई आगे गाइड कर दे कि अब आपने ये काम करना है। तो इतने में ही ना एक पेशेंट को बहुत ज्यादा मोरल सपोर्ट मिल जाती है। कोई मेडिसिन लेने आया है, कोई भी पेशेंट, बहुत ओल्ड पीपल आते हैं मैं देखती हूँ जिनके साथ कोई भी नहीं होता, तो मतलब आके उस स्टेज पे ना बड़ा रोने लग जाते हैं कि भी हम इतने धक्के खाने के बाद यहाँ मेडिसिन के काउंटर पे पहुंचे हैं। तो अगर हम भी ऐसे दवाइयाँ फेंक के मारे, ये लो पकड़ो, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ये हमारी ह्यूमैनिटी है
0: जी।
1: तो मैं अपने आप के बारे में बता सकती हूँ कि मुझे अगर कोई पेशेंट 10 बार भी पूछता है
0: जी।
1: कि मैम ये कैसे खानी है मेडिसिन, तो मैं कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होती। और मेरी, मुझे लगता है कि पेशेंट को ना आधा तो देखो वहीं ठीक हो जाता है पेशेंट, कि अगर हम उससे प्यार से बोल रहे हैं, कभी हम उनसे पूछ ले आंटी आप कैसे आए हो, मैं तो पूछ लेती हूँ कई बार, आंटी कैसे आए हो आप, किसके साथ आए हो, तो लिटरली उनका रोना निकल जाता है, नहीं बेटे मेरा तो कोई भी नहीं है, मुझे कोई नहीं लेके आता।
0: जी, जी।
1: तो जहाँ उनको 15 डेज की मेडिसिन चाहिए होती है, मैं उनको वहाँ 1 मंथ की मेडिसिन प्रोवाइड कराती हूँ,
0: ताकि उनको दोबारा ना आना पड़े,
1: ताकि उनको बार बार ना आना पड़े। जहाँ वो रहते हैं वहाँ से आने के जो उनके व्हीकल है वो भी नहीं उनको मिलता। कुछ लोग बहुत ज्यादा रोते हैं आके यहाँ, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, सभी के लिए लगता है। लिटरली मेरी एक स्टूडेंट है, इंटर्नशिप कर रही है मेरे पास, वो 3 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है उनकी, तो उसकी बी फार्मा की इंटर्नशिप थी, तो उसकी 15 डेज की थी। उसने मुझे बोला कि मैम जिस तरह से आप पेशेंट से डील करते हो, मैं आपसे बहुत कुछ सीखी हूँ। मैंने कहा नेहा तू 15 डेज में, तुझे उसमें से भी 3-4 ऑफ थे, तो तूने क्या सीख लिया 10 दिन में मेरे से। कहती मैम आपका जो तरीका है ना बात करने का, या आपकी जो पोलाइटनेस है, कहती मैं ट्यूशन देती हूँ शाम को घर पे, तो मैं बच्चों को ना लगा देती थी एक थप्पड़ भी कभी अगर कोई लेसन नहीं लर्न करके आता था। तो कहती फिर मुझे भी बाद में एक रिपेंटेंस तो होती थी, पर मेरा नेचर है कि मैं मार देती थी। पर कहती जब से मैं आपसे मिली हूँ ना मैम, लिटरली कहती मैं, मेरी लाइफ चेंज हो गई है। तो मुझे इस तरह के स्टूडेंट्स बहुत मिलते हैं मेरी लाइफ में। आई एम लकी कि जितने बच्चे मेरे से इंटर्नशिप करके जाते हैं, मतलब 15-20 ईयर्स हो गए, 25 ईयर्स मेरी जॉब को हो गए, तो 20 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे अभी तक याद करते हैं और वो भी मुझे याद है, मेरे बहुत दिल के पास है। अभी सभी लोग कोई रजिस्ट्रार ऑफिस में है, कोई एक इंडस्ट्री का कोई मालिक बन गया, कोई कुछ है, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब वो मेरा एक फ़ोन मैं करती हूँ और फ़ोन उठा लेते हैं, कितना भी बिजी शेड्यूल हो, अच्छा कुलविंदर मैम का फ़ोन है, तो वो झट से बहुत खुशी से मेरे से बात करते हैं। मुझे ये सबसे अच्छा लगता है कि हम दिलों में जगह बनाएं, ऐसे नहीं कि देखो जब तक हम सीट पे हैं अपना प्रोफेशनली कोई काम कर रहे हैं तब तो सभी करते हैं हेलो जी और सभी रिस्पेक्ट देते
0: तो
1: हैं,
0: उसके बाद आने चाहिए।
1: मेन बात तो ये है कि हमने दिलों में जगह बनाई कि नहीं।
0: जी जी जी, मैं आपसे ये इस बात से सहमत हूँ कि जो आपने एक उदाहरण दिया, उस उदाहरण के ओर से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने जीवन में एक व्यक्ति को भी प्रभावित करते हैं और उनको बदल देते हैं, तो आई थिंक आपकी जो मेहनत है वो वही सफल हो जाती है जैसे आपने उदाहरण दिया।
1: बिल्कुल,
0: हम भी आपसे प्रभावित है, इसलिए हमने शुरू में ही कहा कि आप बातों से, अपनी वाणी से मरहम लगाते हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो। खास करके आपका प्रोफेशन ऐसा है, जो भी आएगा वो तकलीफ में ही होता है। अगर आप उसके कुछ तकलीफ कम कर सकें, मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे बड़ा जीवनदान कोई भी नहीं है।
1: तो जहां तक बात है कोविड की, कोविड में एक ऐसा हॉरर और एक ऐसा फोबिया था जो एक लेमैन के साथ साथ एक मेडिको के मन में भी था। उतना ही हॉरर और उतना ही डर था कि पता नहीं क्या चीज़ है, जब तक हमें नहीं पता था एक्चुअल कि वो है क्या। ये तो हमें बहुत टाइम के बाद ही धीरे धीरे पता चला, सभी डॉक्टर्स को, सभी पैरामेडिकल को धीरे धीरे ही पता चला कि बेसिकली ये है क्या। लेकिन जब ये आया तो एक छूत की बीमारी की तरह आया कि अगर आप किसी पेशेंट के साथ इंटरेक्शन कर लें, उनसे टच में आ जाएं, उनके संपर्क में आ जाएं, तो ये तो आपको भी कैच कर सकता है। तो उस टाइम था भी बहुत ज़्यादा, और जिस हिसाब से डेथ रेट था कोविड का, आपके सामने फैमिलीज़ की फैमिलीज़ ख़त्म हो गई। तो बीइंग अ मेडिको, हमें ये लगता था कि हम जितना ट्राई करें उनके लिए कि मैक्सिमम हेल्प कर सकें, क्योंकि उनके उनको तो सिर्फ और कोई नहीं दिखता था, उनको दिखता था कि डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर कहाँ है बस। तो हर जगह सिर्फ एक डॉक्टर ही थे जो कहीं ना कहीं घूम रहे थे, कहीं जा जा के फील्ड में लोगों से बातचीत कर रहे थे, उनको हेल्प प्रोवाइड कर रहे थे। तो वो टाइम तो था तो एक बार क्रूशियली, पर बाय द गॉड्स ग्रेस हम लोगों ने पूरा सेफ्टी मेजर्स लेते हुए बहुत अच्छे से हैंडल कर पाए। हम जिस तरह से हम सुबह जाना और पूरा टाइम किट में एक जो होती थी प्रोटेक्टिव किट डाल के रखना, कोई गर्मी नहीं सर्दी नहीं, कोई हमने नहीं देखना कि हमें प्यास लगी है, क्योंकि ऊपर मास्क होता था और किट्स पाए रखना सारा दिन, ऊपर नीचे पैरों में एक शू कवर्स होते थे वो भी डाल के रखना। तो ये डाल के, क्योंकि अपनी लाइफ हमें अपने लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती जितनी हमारे फैमिली को हमारी ज़रूरत है। तो हमें पेशेंट का भी उतना ही ध्यान रखना है और अपनी फैमिली का भी सोचना है। तो हम लोगों को ये सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स लेते हुए अंडर द गाइडेंस ऑफ अवर सिविल सर्जन हमने बहुत अच्छे से कोप अप किया, पूरी कोशिश की। कहीं से फ़ोन आते थे, फ़ोन तो बंद होते ही नहीं थे, बार मतलब खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता था, इतने फ़ोन कॉल्स आते थे, क्योंकि ऑक्सीजन और बेड्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी उस टाइम। सिर्फ एक हरियाणा ही था, हरियाणा में भी सिर्फ एक अम्बाला ही था जहाँ पे कभी किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आई ऑक्सीजन की, बेड्स की। हमने हर टाइम सभी का वेलकम किया कि कोई अपना पेशेंट लेके आना चाहे या किसी को कैसी चीज़ की ज़रूरत है, मास्क की, सैनिटाइजर्स की। एक अननोन का मुझे फ़ोन आया, मैम मैं आपको जानता नहीं हूँ पर मुझे मेरे घर में एक अभी डिलीवरी हुई है और हमें ना डॉक्टर्स मना कर रहे हैं कि आपने उस इन्फेंट के पास जाना नहीं है अनलेस यू हैव सैनिटाइजर विद यू। तो वो कहते हैं हम डबल पेमेंट देने के लिए भी रेडी है मैम, पर हमें सैनिटाइजर मिल नहीं रहा। तो मैंने उसे बोला कोई बात नहीं, आप मेरे घर से ले जाना। वो क्या, उन्होंने एड्रेस लिया और वो घर आए। मैंने जितना मैं उनको दे पाई, हाफ बॉटल दे पाई, ज़्यादा तो मेरे पास भी नहीं था, हाफ बॉटल दे पाई। पर वो आज देखे कितना टाइम हो गया, अभी तक भी मुझे इतना रिगार्ड करते हैं इस बात का कि मैम
0: बहुत बड़ी बात है ये कि
1: मेरे छोटे से बच्चे को मैं उठा नहीं पा रहा था। बेशक हम हाथ धो रहे थे, सब कुछ था, पर फिर भी एक डर था कि सैनिटाइजर यूज करना ही करना है आपने। तो इस तरह से हमने छोटी छोटी जो कर पाए हम बहुत हेल्प की और बड़ा ही अच्छा लगा। कोई राशन, क्योंकि मैं बहुत सारी एनजीओस के साथ अटैच्ड हूँ, तो हमने राशन प्रोवाइड कराए। बहुत शुक्र है भगवान का कि ये टाइम निकल गया। पर फिर भी जो हमारे घर के मेंबर्स थे, किसी ने मुझे एक उस नज़र से कभी नहीं देखा कि इससे दूर रहना है, इसको टच नहीं करना,
0: परेशानी हो सकती है
1: कि हमें कुछ लगेगा। मेरे फादर इन लॉ को भी हुआ कोविड, तो मैंने मेरे मन में एक बार भी नहीं आया कि हमने इनको टच नहीं करना। रादर मैंने ही पकड़ के उनके एक्सरेज कराए, क्योंकि देखिए ये प्रॉब्लम्स तो आनी जानी चीजें हैं, लेकिन हम अपनी फैमिली को अवॉइड करें, इग्नोर करें, मुझे लगता है इससे बड़ी तो कोई बीमारी है ही नहीं। कि अगर हमारे मन में ये चीज आ गई ना कि हमने इनको नहीं टच करना, इनका इलाज नहीं कराना, इनका ट्रीटमेंट नहीं कराना, तो वो कोविड से भी बड़ी बीमारी है। जो थॉट्स नेगेटिव होना ना, वो कोविड से ज्यादा डेंजरस है,
0: और वो किसी भी समय हो सकता है, चाहे कोविड है या नहीं है।
1: एग्जैक्टली
0: जी।
1: तो मुझे बड़ा प्राउड होता है कि बेसिक जो मेरे संस्कार हैं, जो हमें अपनी फैमिली से मिले हुए हैं, तो मैं किसी से भी, एक अननोन से भी मैं नफरत नहीं कर सकती
0: जी।
1: मुझे लगता है कि उनको वो नीडी है। मैं उनकी सीट पे बैठ के जरूर देखती हूँ, मैं एनालाइज करती हूँ कि वो कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन को
0: जी।
1: तो हम तो ठीक है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं किसी भी चीज से, हाइपर हो जाते हैं एकदम, पर ये कोई सोल्यूशन नहीं है,
0: सोल्यूशन समाधान नहीं
1: कि भी हम फ्रस्ट्रेट हो गए, फ्रस्ट्रेशन दूसरे पे निकाल दी। आई डोंट थिंक सो के दिस इज द सोल्यूशन। आप देखिए वो कौन सी स्टेज पे हैं, आप उनको देखिए,
0: उनको कितनी जरूरत है,
1: कितनी जरूरत है, और हमारे एक हौसले से ही वो कितनी जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो एक प्यार जो है ना, वो बहुत बहुत बड़ी ताकत है मुझे लगता है। तो आप कुछ ना कीजिए, कुछ भी ना कीजिए, एटलीस्ट आप प्यार से बोलिए। मैं सोचती हूँ क्वालिफिकेशन बाद में काउंट होती है, आपका बिहेवियर पहले काउंट होता है। तो हम सर्टिफिकेट लेके तो घूमते नहीं कि हम बहुत ज़्यादा स्कॉलर्ड हैं और हम लोगों ने टॉप किया मेरिटली, लेकिन आपका बोलना, आपकी बात, आपकी इंटरेक्शन, आप कितना अटैच्ड हो पा रहे हैं नेक्स्ट पर्सन से, ये
0: तो
1: बहुत ज़्यादा मैटर करता है
0: जी।
1: तो ये मेरी सोच है।
0: नहीं, मैं आपकी सोच को सबसे आगे रखता हूँ, और जितने हमारे सुनने वाले हैं वो इस बात से सहमत होंगे। उस कोविड टाइम में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जहां पर अपनों ने अपनों का साथ छोड़ दिया, वो समय निकल गया। हमारे देश में वैक्सीनेशन इतनी स्पीड से हुई और विश्व में भी हमारा देश सबसे आगे रहा, वो मुश्किल दौर निकल गया। अब कुछ और चुनौतियां हमेशा ही हमारी जिंदगी में होती, बट वो सबसे मुश्किल थी, जहां हम एक दूसरे के संपर्क में आने से बचते थे। तो घर में बचपन से ही आपको क्या ऐसा माहौल मिला, और इसी वजह से आपने कई सारे गुरबानी कॉम्पिटिशन्स भी जीते हैं?
1: जी, जैसे शुरू से ही मुझे बहुत ज़्यादा शौक था गाने का। गाने का तो हम तीनों को ही था, सिब्लिंग्स को, तीन ब्रदर सिस्टर हैं हम तीनों ही गाते हैं। आज वो भी जहाँ स्टैंड कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जिस भी स्टेज पे हैं, वहाँ वो अब बहुत अच्छा से गाते भी हैं, हर स्टेज पे परफॉर्मेंस भी है, सबकी है
0: जी।
1: हम तीनों की। तो ये सिर्फ मेरी मदर की वजह से हो पाया, उनको देखते देखते हमें भी शौक आ गया गाने का। और हमने कहीं से बेसिक ट्रेनिंग नहीं ली म्यूज़िक की, हारमोनियम प्ले करने की, ढोलक प्ले करने की, तबला प्ले करने की, ये सारी चीज़ें हमें देखते ही देखते आ गई। और जैसे मन में होता था, पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं, तो मेरे मदर फादर, मुझे याद है, मेरे साथ 3 hours 4 hours कॉम्पिटिशन के लिए खड़े रहते थे। तो हम लोगों को बिल्कुल भी वो कभी नहीं हुआ कि हमें कहीं जाना है। डैडी भी अपने जॉब से ऑफ छुट्टी लेके, मेरे डैडी SDO थे BSNL में, इसी के साथ चलते चलते फिर शादी होने के बाद मुझे यहाँ सबसे पहला अवार्ड मिला वॉइस ऑफ अम्बाला, जहाँ पे एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन था और मदर्स डे पे बेस्ड था वो। तो मैंने वहाँ फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन, क्योंकि पता नहीं था अम्बाला का कुछ, तो मैं जाके चलो कर लेते हैं, घर से परमिशन ली नहीं थी कि भाई करूँ कि नहीं करूँ, और मैंने जाके परफॉर्म किया। और फिर एक वॉइस ऑफ अम्बाला का बहुत, देखिए अवार्ड्स तो बहुत मिले मुझे, पर ये बड़ा अच्छा नाम था वॉइस ऑफ अम्बाला, तो एक ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या अचीव कर लिया मैंने। और जब मैं घर जाके बड़े प्राउडली मैंने अपने पेरेंट्स को और फादर इन लॉ, मदर इन लॉ को, सबको बताया, तो आई वॉज फीलिंग सो ब्लेस्ड कि मुझे बहुत अच्छा लगा फर्स्ट अवार्ड लेके अम्बाला का। तो उसके बाद तो बस फिर जैसे डे बाय डे सबको पता चलने लगा, सभी जगह मुझे इनवाइट करने लगे, और गुरबानी तो मैं सभी गुरुद्वारे में गाती ही थी। इसके बाद धीरे धीरे मुझे काफ़ी अवार्ड्स मिले। MLA सर ने दिया मुझे एक अवार्ड, वुमेन अचीवर्स अवार्ड, वो एक कंट्री वुड्स में हुआ था, MLA सर ने ही करवाया था, मेरा आसमा के अंडर था वो
0: जी।
1: एक अवार्ड था वुमेन अचीवर अवार्ड, फिर उसके बाद एक वाइस वुमेन विद एन एज. ये एक फैशन डिजाइनिंग है, फैशन डिजाइनर है मैम, उन्होंने करवाया था, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था. फुल ओपन कंपटीशन था ये, और एक ये प्रोफाइल बेस्ड था कि कौन कितना परफॉर्मेंस भी थी प्लस उनका प्रोफाइल भी था. तो ये फुल डिटेल्स देखी गई थी, उसके बिहाफ पे हमने नॉमिनेट किया था
0: जी.
1: उसमें भी मैं विनर थी.
0: तो हम भी चाहते हैं कि इस चर्चा को हम जारी रखे हुए हैं. हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक कोई आप शब्द या गुरबानी हमें सुनाएं, और उसके बाद फिर आपके बाकी जो आप सिंगिंग करते हैं, गीत हैं, गजल है, उनकी तरफ भी हम जाएंगे. तो मैं चाहूंगा कि एक शब्द या गुरबानी हो.
1: जी,

0: आप रियाज जब घर में करती हैं तो क्या आपके बच्चे और परिवार सदस्य भी आपके साथ रहते हैं, उनका साथ कितना आपको मिलता है?
1: देखिए, ये एक सच्चाई है कि मैं रियाज बहुत कम करती हूँ। अगर मैं रियाज करने का मुझे टाइम मिले या मौका मिले तो शायद मैं अपना मेन प्रोफेशन छोड़ के इसे ही मेन प्रोफेशन बना लूं। और जब बहुत साल तक तो हमारे पास हारमोनियम था ही नहीं
0: जी।
1: तब तक मैं गुरबानी गाती थी, पर हारमोनियम भी नहीं था हमारे घर पे कि हम लोग प्रैक्टिस कर पाएं या रियाज कर पाएं। जहाँ हम जाते थे ऑन द स्पॉट ही गा पाती थी। और इसी तरह से अभी भी मैं अगर अपनी वॉइस को ज़्यादा यूज़ ना करूँ, बच्चों को ना डांटूँ, ज़ोर से ना बोलूँ, मुझे लगता है मेरे लिए यही रियाज है। अगर मैं ज़रा सा भी ज़ोर से बोलती हूँ तो मेरी आवाज़ मुझे एक चौक हो जाता है मेरा गला ना। तो रियाज मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती। और घर में भी किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है म्यूज़िक में, बच्चे अपने स्टडीज़ में रहते हैं और हस्बैंड बिजनेस में रहते हैं
0: जी।
1: तो किसी को कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है।
0: तो जब आपको अपने हिसाब से समय मिलता है तो आप मन ही मन या लो वॉइस में आप तैयारी करती हैं?
1: जी, मैं बस यही देख लेती हूँ कि रिदम क्या है गाने की, लिरिक्स क्या है। ये मेरा एक बहुत वीक पॉइंट है कि मुझे लिरिक्स नहीं याद रहते। तो पहले जब छोटे थे हम गुरुद्वारे जाके वहाँ हारमोनियम पढ़ा होता था, हम उनसे पूछ के ग्रंथी जी से कि हम 10-10 मिनट यूज़ कर लें, तो वहीं बैठ के एक आधा कोई शब्द निकाल आना हारमोनियम पे बजा के देख आना। उसके बाद अब तो कोई लगता नहीं कि ज़रूरत है, ऑन द स्पॉट जो बोलना होता है मैं वहीं बोल लेती हूँ। किसी रागी को सुनती हूँ या कोई ऑडियोज़ किसी के सुनती हूँ तो वो कैच कर लेती हूँ और मन में रह जाते हैं कि इसके ये म्यूजिक है और इसे ऐसे गाना है,
0: ये इसकी लय और ये इसकी ताल होनी चाहिए
1: होनी चाहिए।
0: कुलविंदर जी, आप मुझे ये बताइए कि गाने के सिवा आपके और क्या क्या शौक है?
1: देखिए, सबसे ज्यादा मुझे शौक है सबको खुश रखने का। मुझे बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट भी नहीं हूँ मैं, पर बहुत इंट्रोवर्ट भी नहीं हूँ
0: जी।
1: तो मुझे ऐसा लगता है कि जो काम भी करें हम, सबकी सहमति और सबकी खुशी से किया जाए। तो शौक तभी पूरे होते हैं अगर आपकी फैमिली आपके साथ सेटिस्फाइड और हैप्पी है, नहीं तो फिर ये मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि हम अपने शौक पूरे करने के लिए अपनी फैमिली डिस्टर्ब करें। शौक की वजह से मुझे एक मॉडलिंग का बहुत शौक था और मुझे ऑफर भी आया था। प्लस टू के बाद मेडिकल था मेरे पास, तो उसके बाद मुझे मॉडलिंग के लिए ऑफर आया, पर उस टाइम मेरे ब्रदर ने मुझे मना कर दिया कि नहीं करना। शादी के बाद मुझे ऑफर आया साड़ी और लहंगे की मॉडलिंग के लिए। मुझे बहुत शौक है गाने के साथ साथ।
0: कर पाए कि नहीं कर पाए?
1: नहीं, अभी भी नहीं कर पाई।
0: पर एक स्टेज पे हमने आपको देखा है, एक फैशन शो था और मैं भी उस जगह पर हाजिर था, तो उसमें आपने जो अपनी दिल की जो इच्छा थी क्या वो पूरी हो गई उस दिन कम से कम?
1: हाँ, मैं कोशिश करती रहती हूँ। कोशिश करती रहती हूँ।

0: अपने शौक किसी तरह से पूरे किए जा सकें। मुझे बच्चों को सिखाने का, जैसे मैं बहुत पहले मैंने बच्चों को कीर्तन का ग्रुप बनाए थे
1: जी।
0: तो मैं उनको गुरबानी हारमोनियम पे सिखाती थी
1: जी।
0: मैं उनके लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स रखती थी कि वो आज तुम लोगों ने कितने पाठ किए, नंबर ऑफ जस्ट लाइक वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु इस तरह का जाप करके आना है। पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों ने 100 times ये जाप करना है और मुझे आके लिखवाना है। और मैंने एक डायरी बनाई हुई थी बच्चों की, तो जिसका मैक्सिमम जाप होते थे। और मैंने ये भी कह रखा था झूठ नहीं बोलना किसी ने, झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा
1: जी।
0: और फिर मैं उनको छोटे छोटे गिफ्ट्स देके मोटिवेट करती थी।
1: क्या आप अब भी बच्चों को सिखाती हैं? अगर आप सिखाती हैं तो क्या आप यहाँ पर भी हमारे श्रोताओं को बता सकती हैं, ताकि अगर वो जुड़ना चाहें आपके साथ वो भी जुड़ सकते हैं?
0: जी बिल्कुल, मैं कीर्तन भी सिखाती हूँ और पाठ भी सिखाते हैं हम। हमारा एक ग्रुप है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं हम, गुरबानी का एक ग्रुप है जो हम हर पूर्णमासी पे बाशे बाग गुरुद्वारे में 11 बजे से लेके 2 बजे तक, और हर मस्या यानी अमावस वाले दिन बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे इच्छापूरक में सेम टाइमिंग्स 11 to 2 वहाँ भी हम गुरमत कैंप वो करते हैं, जिसमें हम कोई सेवा नहीं लेते किसी से फाइनेंशियली, लेकिन बच्चों को सिखाने की कोशिश रहती है हमारी। बेसिक्स जो चीज़ें हैं वो हम उन्हें एक रिटर्न फॉर्म में देते हैं, ताकि उनको
1: कुछ संस्कारिक तौर पर वो सारी जानकारी उनको मिल
0: सके जी। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को एटलीस्ट अपने बेसिक्स तो पता होने ही चाहिए। तो ये हम अभी भी कंटिन्यू है हमारा, हर गुरुपुरब पे, हर एक जितने भी ये प्रोग्राम्स होते हैं, कीर्तन दरबार होते हैं, वहाँ भी हमारे कैंप्स लगते हैं, वहाँ भी हम बच्चों को गुरबानी सिखाते हैं। 10 sector वाला गुरुद्वारा है, 8, 9, 10 वाला, वहाँ पे हम सैटरडे संडे शाम को 6 to 7 ये क्लासेस देते थे। आजकल एग्जाम्स की वजह से बंद हैं क्लासेस, तो वहाँ हम फ्री ऑफ कॉस्ट एक टर्बन लर्निंग है और एक गुरबानी है, दोनों चीजें सिखाते हैं। अभी भी कोई सीखना चाहे तो कभी भी
1: इन जगहों पर
0: आ सकते हैं,
1: आपसे मिल सकते हैं
0: वहाँ जी।
1: मैडम, आप गुरुजन को कैसे याद करेंगे? उनको समर्पित कोई गाना या कुछ भी आप उनके लिए प्रस्तुत करेंगे?
0: मेरी नजर में मेरे गुरु मेरे मदर फादर ही हैं, क्योंकि शुरू से हमने उनसे ही सीखा है जो कुछ भी सीखा। मेरे डैडी लेट सरदार मनोहर सिंह बिंद्रा, मेरी मम्मी मिसेस प्रीतपाल कौर बिंद्रा, हमने इनसे ही सीखा जो कुछ भी सीखा। अदरवाइज हमने कोई म्यूजिकल कोचिंग तो नहीं ली, तो इसलिए हमारे गुरु तो यही हैं। जितनी बार मैं भगवान का थैंक्स करती हूँ, उतनी बार मैं अपने डैडी का थैंक्स करती हूँ जिन्होंने हमें आज इस स्टेज पे, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, मैं आज इस स्टेज पे हूँ प्रोफेशनली और मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सेटिस्फाइड विद माय जॉब। मैं स्टडीज़ के टाइम हर क्लास में जैसे जैसे टॉप कर रही थी, तो मेरे प्रिंसिपल सर ने मुझे बोला था कि आप MSc टॉप कर लो तो हम आपको गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर की जॉब देंगे
1: जी।
0: तो मीन टाइम मेरे डैडी ने अप्लाई किया हुआ था इधर फार्मेसी ऑफिसर के लिए, तो मेरी कोइंसिडेंस था कि मीन टाइम मेरी जॉब अपॉइंटमेंट हो गई। मैंने अपने फादर को बोला था कि मैंने जॉब नहीं करनी, मैंने लेक्चरर बनना है। तो मेरे डैडी ने बोला कि लोग तो पढ़ते हैं जॉब के लिए और तू जॉब को छोड़ के पढ़ रही है, कोई बात नहीं, तो एक बार ज्वाइन कर ले, अगर तेरा मन नहीं माना बीच में हम लीव लेके फिर हम स्टडी कंटिन्यू कर लेंगे। तो बट आई एम सेटिस्फाइड कि मैं जहाँ भी हूँ बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। लेक्चरर से ज़्यादा खुश हूँ अब मैं कि ये काम के साथ साथ मुझे बहुत तरह के लोग मिलते हैं जिनकी हम सेवा भी कर सकते हैं
1: जी।
0: तो इसलिए मेरे गुरु तो मेरे मदर फादर ही हैं। मैं 100 बार थैंक्स करना चाहती हूँ उनका जिन्होंने आज हमें इस स्टेज पे पहुंचाया, हमें अच्छे संस्कार दिए कि हम किसी का दिल ना दुखा सकें, और अदरवाइज मुझे इंडिपेंडेंट बनाया ताकि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। तो और मैं बाकी लेडीज को भी यही कहना चाहूंगी कि अपने शौक को कभी खत्म मत कीजिए, आप अपने लिए भी जिए। ठीक है, फैमिलीज आर प्रायोरिटी, वो एक बहुत अच्छी बात है, पर अपने शौक खत्म करने के लिए नहीं होते, हम भी तो एक इंसान ही है ना। तो आप लेडीज हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ लॉन्ग दूसरों के लिए करते रहेंगे। आप कोऑपरेशन हमें भी चाहिए, हमें भी अपने फैमिली मेंबर से, अपने पार्टनर से कोऑपरेशन चाहिए। तो हम कह सकते हैं उनको कि आप ये कर रहे हैं तो हम भी ये करना चाहते हैं, तो अगर तो कोऑपरेशन मिल रही है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप टाइम निकाल के अपने शौक ज़रूर पूरे कीजिए। सबसे बड़ी बात है इंडिपेंडेंट होने की। मैं चाहती हूँ आप अपनी बेटियों को, अपनी डॉटर इन लॉज को, सभी को ये एक शिक्षा दीजिए कि आप लोग इंडिपेंडेंट बने और अपने शौक जरूर पूरे करें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बता दिया कि हर एक व्यक्ति का दायित्व भी है और हर एक व्यक्ति का राइट भी है, वो अपने तरीके से अपनी जिंदगी को जिए, उसके साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी वो निभाए। आपने बहुत ही सरल शब्दों में इस चीज को बता दिया और हमारी श्रोताओं ने ये सुना, और मुझे पूरी आशा है कि उनको आज का ये साक्षात्कार बहुत ही पसंद आया होगा। कुलविंदर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने आज बहुत ही अमूल्य समय हमें दिया और हमारी श्रोताओं से बात की। आपने हर तरीके की बात की, जैसे आप लोगों को अपने वाणी से, अपने प्रोफेशन से लोगों का सपोर्ट करती हैं, उनके मुश्किलों को आप कम करती हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि अम्बाला में आप जैसे लोग हैं, और हम भी कोशिश करते हैं रेडियो वितस्ता के माध्यम से कि हम लोगों तक कुछ आराम के पल लेके आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे लेता हूं इजाजत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, और सभी श्रोताओं को आखिर में हम कुलविंदर जी के कुछ पंक्तियों के साथ छोड़ देते हैं।
0: मैं भी आपको बहुत थैंक्स करना चाहूंगी, क्योंकि क्वालिटीज होती तो सभी में है, पर उसको अप्रिशिएट करना भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो मुझे लगता है आप में है। और हम वी आर वेरी लकी कि हम लोग आपके चैनल के थ्रू, हम एक रेडियो चैनल के थ्रू जो अम्बाला में, अम्बाला कैंट का एक नामी गिरामी चैनल है, उसके थ्रू हम लोगों से बात कर सकते हैं। तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम पहले भी आपसे जुड़े और अब भी जुड़ रहे हैं। आपके अंदर वो जज्बा है जो बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के आप लोगों को बाकी लोगों के साथ जोड़ते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपका थैंक्स जो हम इस प्लेटफॉर्म तक आ पाए। और इसी के साथ, कुछ लाइनों के साथ हम ऑडियंस से अपनी इजाजत लेंगे। कंदा कच्चियां ने जी प्रीता सच्चियां ने,

आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए, एपिसोड 6। आज के मेहमान थे श्रीमती कुलविंदर कौर, प्रस्तुतकर्ता भारत सोपोरी, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग दीपक कश्यप, निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता की पेशकश।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का परवाह। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु, लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। नींबू, अमरूद, संतरा व चीकू के नए पौधे तैयार करने के लिए सितंबर के अंतिम दिन अनुकूल। सितंबर में गूटी ग्राफ्टिंग करें, अक्टूबर से घटेगी कलम और जड़ फूटने की रफ्तार। सदाबहार फलदार पेड़ों जैसे नींबू, अमरूद, संतरा और चीकू के नए स्वस्थ और उन्नत पौधे तैयार करने के लिए सितंबर का महीना सबसे उपयुक्त और अंतिम मौका माना जाता है। करनाल के जिला उद्यान अधिकारी DHO कमल सैनी ने बताया कि मॉनसून की विदाई के समय हवा में मौजूद पर्याप्त नमी और हल्का तापमान कलम बांधने, एयर लेयरिंग व गूटी एवं ग्राफ्टिंग के लिए एकदम अनुकूल होता है। अक्टूबर शुरू होते ही तापमान में गिरावट आने लगती है और शुष्क हवाएं चलने से नए कल्ले व जड़े फूटने की दर धीमी हो जाती है। इसलिए बागवानों और किसानों को सितंबर के शेष दिनों में ही यह कार्य पूरा कर लेना चाहिए। विशेषकों के अनुसार इस समय पौधों में नमी का संतुलन बना रहता है, जिससे कलम और ग्राफ्टिंग के बाद जुड़ाव तेजी से होता है। कार्य करते समय स्वस्थ मात्र पौधे का चयन करें और कटे हिस्से को साफ रखकर उचित नमी बनाए रखें। स्वस्थ मात्र वृक्ष चुनना सबसे जरूरी। कलम बांधने के लिए मात्र वृक्ष का चयन सबसे अहम कड़ी है। जिस पेड़ से कलम ली जा रही हो वह पूरी तरह स्वस्थ, रोग मुक्त और नियमित रूप से अच्छी गुणवत्ता के फल देने वाला होना चाहिए। नींबू, अमरूद, संतरा या चीकू के पेड़ से लगभग 1 से 2 वर्ष पुरानी पेंसिल के आकार जितनी मोटी और सीधी बढ़ने वाली शाखा का चुनाव करें। अधिक पुरानी या बहुत कोमल हरी टहनी पर जड़े निकलने की संभावना काफी कम होती है। छाल हटाकर मार्स और पॉलीथीन से शाखा पर तैयार करें जड़े। शाखा के चुने हुए स्थान पर पत्तियां हटाकर चाकू से 2 से 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा छिलका गोलाई से उतार लें। इसके बाद तने की ऊपरी हरी परत को हल्के से खुरच दें। कटे हुए भाग पर रूटिंग हार्मोन ICBA पाउडर लगाएं या प्राकृतिक तौर पर एलोवेरा जेल का लेप करें। अब नम मार्स ग्रास, स्फागनम मार्स या चिकनी दोमट मिट्टी व संडी गोबर की खाद से मिश्रण को कटे हुए हिस्से के चारों ओर लपेटें। ऊपर से 200 गैज की पारदर्शी पॉलीथीन शीट लपेटकर दोनों सिरों को सूतली से कसकर बांध दें। नर्सरी और नए पौधों की देखभाल। लगभग 35 से 45 दिनों में पारदर्शी पॉलीथीन के भीतर से सफेद रंग की जड़ें साफ दिखाई देने लगती हैं। जब जड़ें पूरी तरह विकसित और हल्की भूरी हो जाएं, तब शाखा को गांठ के ठीक नीचे से आरी की मदद से काटकर मुख्य पेड़ से अलग कर दें। इसके बाद पॉलीथीन को सावधानी से खोलकर पौधे को 50% मिट्टी और 50% वर्मी कंपोस्ट से भरें। पॉलीबैग या गमले में लगा दें। नए पौधे को शुरुआती 15 से 20 दिनों तक सीधी धूप से बचाकर छायादार स्थान पर रखें और हल्की सिंचाई करते रहें। बंद गोभी की अगेती बिजाई का अभी सही समय। 5 सप्ताह में तैयार हो जाएंगी पौध। बंद गोभी के लिए प्रति एकड़ 250 ग्राम बीज डालें किसान। बंद गोभी व गांठ गोभी की अगेती किस्मों की बिजाई के लिए यह उपयुक्त समय है। बंद गोभी की किस्में प्राइट ऑफ इंडिया या गोल्डन लगाएं। गांठ गोभी की किस्में अर्ली वाइट वियाना प्रयोग करें। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने बताया कि बंद गोभी की 1 एकड़ के लिए 200 से 250 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। गांठ गोभी की किस्म अर्ली वाइट वियाना प्रयोग करें। इसके लिए 800 ग्राम बीज प्रति एकड़ के लिए पौध तैयार होने में 5 से 6 सप्ताह का समय लगेगा। बीज बोने से पहले कैप्टान नामक दवा से उपचारित 2.5 ग्राम दवा
प्रति किलोग्राम बीज की दर से करें। फूलगोभी की अगेती किस्म पूसा कातकी के खेत की उचित देखभाल करें, सिंचाई करें और रोपाई के लगभग 3 सप्ताह बाद प्रति एकड़ 35 किलोग्राम यूरिया यानी 16 किलोग्राम नाइट्रोजन व फूल बनने की अवस्था में भी 35 किलोग्राम यूरिया यानी 16 किलोग्राम नाइट्रोजन से टॉप ड्रेसिंग करें। नाइट्रोजन देने के बाद सिंचाई करें। हिसार एक की 15 सितंबर तक बिजाई करें। फूल गोभी की मध्य मौसमी किस्मों हिसार एक की रोपाई कर सकते हैं। इसकी रोपाई अच्छी तरह तैयार खेत में 15 सितंबर तक करें। पौधे से पौधे की दूरी व लाइन से लाइन की दूरी मध्य वर्ग से 60 सेंटीमीटर रखें। पछेती किस्म स्नोबॉल 16 की बिजाई भी नर्सरी में इसी माह के अंत में शुरू की जा सकती है। इस समय अगेती गोभी को सुंडी आदि के प्रकोप से बचाने के लिए 400 मिलीलीटर मेलाथियन 50 EC को 250 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ फसल पर हर 10 दिन बाद छिड़काव करें। टमाटर का सफेद मक्खी के प्रकोप से बचाव करें। सब्जी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश तेलहन के अनुसार टमाटर की अगस्त में रोपी गई पौध की देखभाल करें और नाइट्रोजन खाद की पहली मात्रा रोपाई के लगभग 4 से 5 सप्ताह बाद डालें। एक एकड़ खेत में लगभग 14 किलोग्राम नाइट्रोजन 30 किलोग्राम यूरिया देकर सिंचाई करें। नाइट्रोजन खाद की दूसरी मात्रा फसल में फूल आने की अवस्था में देनी होती है। यदि अधिक वर्षा हो तो जल निकास का प्रबंध करें और सूखा होने पर सिंचाई करें। सफेद मक्खी का प्रकोप होने पर 400 मिलीलीटर मेलाथियन 50 EC को 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। विषाणु रोग को फैलाने वाली सफेद मक्खी की भी मेलाथियन से रोकथाम की जा सकती है। धान का विकल्प बन सकती है मक्का की खेती। पानी बचेगा और लागत घटेगी, लेकिन बाजार में उचित कीमत बड़ी चुनौती। पूर्व ICAR निदेशक बोले, प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दे रही सरकार। हरियाणा में तेजी से गिरते भूजल स्तर के बीच धान की जगह मक्का को बढ़ावा देना फसल विविधीकरण का मजबूत विकल्प है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के पूर्व निदेशक डॉक्टर साई दास के अनुसार धान की तुलना में मक्का कम पानी लेने वाली फसल है। इससे भूजल दोहन कम होने के साथ सिंचाई और बिजली की लागत में भी कमी आ सकती है। हालांकि किसानों को धान से मक्का की ओर लाने के लिए उचित कीमत और सुनिश्चित बाजार उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती है। सोनीपत के अलावा अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल सहित कई क्षेत्रों में मक्का की खेती की अच्छी संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों में बेहतर सरकारी नीति, वैज्ञानिक तकनीक, गुणवत्तापूर्ण हाइब्रिड बीज और किसानों को बाजार उपलब्ध कराने पर मक्का को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जा सकता है। हरियाणा सरकार भी मक्का की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दे रही है। पोल्ट्री फीड स्टार्च और एथेनॉल उद्यानों से बढ़ेगी मांग। हरियाणा में पोल्ट्री फीड स्टार्च फूड प्रोसेसिंग और एथेनॉल उद्यानों में मक्का की बढ़ती मांग किसानों के लिए बड़ा अवसर बन सकती है। इसके लिए स्थानीय मक्का वैल्यू चेन विकसित करनी होगी। ड्राइंग, ग्रेडिंग, स्टोरेज, परिवहन और प्रोसेसिंग सुविधाएं विकसित होने पर किसानों को स्थिर बाजार और बेहतर कीमत मिल सकती है। सरकारी खरीद नहीं होने के कारण किसान पीछे हट रहे। मक्का के लिए सरकारी खरीद व्यवस्था नहीं है। ऐसे में किसान निजी व्यापारियों और कीमतों के उतार चढ़ाव पर निर्भर रहते हैं। MSP आधारित समर्थन मूल्य की गारंटी, अनुबंध आधारित खरीद और FPO के माध्यम से सामूहिक बिक्री को बढ़ावा देना जरूरी है।
क्लाइमेट रेजिलिएंट मक्का किस्मों की जरूरत बढ़ेगी। बढ़ते तापमान और मौसम में बदलाव के कारण आने वाली वर्षा में सूखा और प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने वाली क्लाइमेट रेजिलिएंट मक्का किस्मों की जरूरत बढ़ेगी। सही हाइब्रिड, वैज्ञानिक खेती और बाजार मिलने पर हरियाणा मक्का उत्पादन में अग्रणी राज्यों की कतार में शामिल हो सकता है। ये थे आज के कृषि समाचार। आशा करती हूँ आपको इन जानकारियों से लाभ होता होगा। अगर आपके पास कोई कृषि जानकारी है तो आप हमें हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, ताकि हम सभी श्रोताओं तक पहुंचा सकें। स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में। आप खुश रहें, उन्नत रहें। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
2: घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो।
3: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
4: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयाल बाग के राजा पधार रहे हैं।
3: 14वां श्री गणेश महोत्सव दयाल बाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अंबाला छावनी में। तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महा आरती का हिस्सा जरूर बनिए।
4: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं सायं 7 बजे।
3: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
4: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 सायं 8 बजे।
3: गणपति बप्पा मोरिया।
1: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। प्रस्तुत है कार्यक्रम किडनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट एपिसोड 13। आज का शीर्षक है कारण भी हम निवारण भी हम। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड और एडिट किया भारत सोपोरी ने, निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किडनी।

आप सुन रहे हैं किडनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की हरवानी। आज का टॉपिक है कारण भी हम निवारण भी हम। मुस्कान का वजन दिन पर दिन तेजी से बढ़ रहा था। जब उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने उसे अपनी दिनचर्या के बारे में विस्तार से बताने के लिए कहा। डॉक्टर को समझ आया कि वो अधिकतर पैक्ड या प्रोसेस्ड भोजन खाती है, उसकी शारीरिक गतिविधियां शून्य है, अक्सर दोस्तों के साथ बाहर खाना पसंद करती है, ऐसे चीजों का सेवन कर रही है जिनसे पोषण नहीं मिल रहा है लेकिन शरीर में चर्बी बढ़ रही है, बैठे बैठे टीवी देखना, मोबाइल चलाना भी उसे शारीरिक रूप से सक्रिय होने से रोक रहा है। आज हम सभी जिस तेज और डिजिटल जीवन शैली में जी रहे हैं वही हमारी बीमारियों की जड़ बन चुकी है। समय के साथ हमारे रहन सहन में बदलाव आया लेकिन इस बदलाव के साथ हमने अपनी जीवन शैली को भी इतना बदल दिया कि उसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने लगा। नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ मोटापा बढ़ा बल्कि कई और बीमारियों को भी हमने खुद ही न्योता दे दिया। ये बात हम अभी महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या खा रहे हैं और कैसी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जब हम पहले की और आज की जीवन शैली के बीच के बदलावों को समझे तब इसका एहसास होगा, तब और अब के फर्क को समझते हैं। शारीरिक गतिविधियों की कमी, पहले बच्चे पार्क में खेलते थे, दौड़ते थे, लोग पैदल ज्यादा चलते थे, महिलाएं और पुरुष दिन भर किसी न किसी काम में व्यस्त होते थे, बातचीत के लिए ही बैठते थे और लेटते तभी थे जब सोने जाते थे। अब बच्चे खेलने नहीं स्क्रीन पर जीते हैं, चलना लगभग खत्म हो चुका है, यहाँ तक कि सब्जी लेने के लिए भी हमारे कदम नहीं गाड़ी के टायर चलते हैं। एक औसत बच्चा रोजाना 3 से 4 घंटे स्क्रीन पर बिताता है। बैठे रहने से प्रति घंटा सिर्फ 80 से 100 कैलोरी बर्न होती है जो वजन और चयापचय दर पर निर्भर करता है। वही खेलने कूदने से 400 से 500 कैलोरी तक खर्च हो सकती है। असंतुलित आहार और जंक फूड, पहले केवल घर का बना खाना खाते थे, घी और मक्खन घर पर बनता था, खाने में दाल रोटी और ताजी सब्जियां हुआ करती थी। अब प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड स्नैक्स और इंस्टेंट नूडल्स आदि का सेवन किया जा रहा है। खाने में पोषण नहीं केवल मैदा है, प्रोसेस्ड चीज और पाम ऑयल का सेवन अधिक हो रहा है, पास्ता पिज्जा बर्गर आए दिन खा रहे हैं। एक बड़ा बर्गर 500 से 600 कैलोरी का होता है जबकि एक थाली में परोसी संतुलित दाल रोटी में 300 से 400 कैलोरी होती है। मीठे पाई और शक्कर की अधिकता, पहले पाई में जूस छाछ लस्सी पन्ना आदि पीते थे जबकि इनके लिए तो कोई मशीन भी नहीं थी, अब मीठा वजन बढ़ाने का सबसे आसान तरीका बन गया है। पैकेज्ड जूस कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स का सेवन बढ़ गया है जिसमें ज्यादा शक्कर होती है। प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स से भरपूर एक गिलास छाछ में 50 कैलोरी होती है, वही एक गिलास कोल्ड ड्रिंक में 150 कैलोरी जिससे केवल शक्कर और रसायन है। शक्कर शरीर में फैट स्टोरेज को तेजी से बढ़ा सकती है। अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करें, अपने हाथों और पैरों को सक्रिय बनाए रखने की कोशिश करें। लगातार सक्रियता शरीर को व्यस्त और मस्तिष्क को सजग बनाए रखेगी। लगातार बैठकर काम कर रहे हो तो कुछ देर चहलकदमी करें फिर बैठें। जो चीजें पौष्टिक नहीं है और वजन बढ़ाने का कारण बनती है उन्हें घर में रखना ही बंद कर दें। अक्सर लोग सोचते हैं कि चीट डे पर बर्गर पिज्जा आदि खा सकते हैं लेकिन ऐसे करने से आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। सच तो ये है कि चीट डे जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर बाहर खाना ही है तो ऐसी जगह जाए जहाँ सेहतमंद और संतुलित भोजन विकल्प मौजूद हो। दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पिए, रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद ले, टीवी देखते हुए या फोन चलाते हुए खाना खाने से बचें, धीरे धीरे खाएं और हर निवाले को अच्छी तरह से चबाएं, साथ ही अपनी थाली को भी माइंडफुली सजाएं। इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।

0: ದೈಚು ಬೊಜಾನ್ 90.0 ರೇಡಿಯೋ ವಿತಸ್ತ ಹಮ್ ಸಫರ್ ಜಿಂದಗಿ ಹೊಂದ್.
1: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी. ललेश्वरी, जिन्हें ललदत्त या ललेश्वरी शिव योगिनी भी कहा जाता है, 14वीं शताब्दी की कश्मीरी संत कवियत्री और शैव दर्शन की प्रमुख साधिका थी. उन्होंने ललवाक नाम से जाने जाने वाले रहस्यमयी दोहों में जीवन, आत्मा और ईश्वर के गहरे सत्य व्यक्त किए. उनकी वाणी में भक्ति, दर्शन और मानवीय संवेदना का अद्भुत संगम मिलता है. ललेश्वरी ने समाज को बताया कि ईश्वर मन के भीतर है, बाहरी अडंबरों में नहीं. शिव योनि का अर्थ है शिव की सृजनात्मक ऊर्जा, अर्थात वह दिव्य स्रोत जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है. कश्मीर शैव दर्शन में शिव योनि को सृजन, चेतना और शक्ति का प्रतीक माना गया है. ललेश्वरी की वाणी में शिव योनि का उल्लेख आत्मबोध और परम चेतना की अवस्था को समझाने के लिए आता है. ललवाक शब्द का अर्थ है लल यानी ललेश्वरी, के वाक यानी वचन या दोहे. ये छोटे छोटे दोहे या सूक्तियां हैं जिनमें उन्होंने साधना, आत्मज्ञान, प्रेम और सच्चे ईश्वर की अनुभूति को सरल भाषा में व्यक्त किया है. ये वाक आज भी कश्मीर की आत्मा की आवाज माने जाते हैं. हमने ललेश्वरी के ललवाक को हिंदी और कश्मीरी में तैयार कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है. हम मानते हैं कि ये ललवाक हमारी जीवन का रास्ता आसान कर देती है. इन ललवाक को समझाया है हिंदी और कश्मीरी में डॉक्टर राज नेहरू जी ने और आवाज दी है श्रीमती नीरजा पंडित ने. इनको तैयार किया है जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता अशोक पंडित ने. तो आइए सुनते हैं ललवाक की ये श्रृंखला.
2: नमस्कार. आज का जो ललवाक ललेश्वरी शिवयोगिनी द्वारा कहा गया है ये बहुत ही विचित्र है, क्योंकि इसमें अध्यात्म और विज्ञान दोनों का मिश्रण आपको दिखाई देगा. ललदत्त कहती है, गोरस प्रछोम सास लेटे यस्न क्या मनान तस क्या ना प्रसान प्रसान थचस तलूसस केहनस निशी क्या थाम द्राव. यानी ललदत्त कहती है, गोरस प्रछोम सास लेटे हजारों बार मैंने अपने गुरु से पूछा, यस्न क्या मनान तस क्या ना, जिसे कुछ भी नहीं कहते उसका नाम क्या है. प्रसान प्रसान थचस तलूसस पूछते पूछते मैं थक और हार गई, केहनस निशी क्या थाम द्राव, और अंत में कुछ नहीं मैं से ही सब कुछ निकला. ललदत्त की वो प्रभु को जानने की प्यास और उस प्रभु को जानने में वो अपने गुरु के पीछे पड़ी हुई है. वो गुरु भी क्या रहा होगा और ललदत्त भी क्या रही होगी कि जो निरंतर बिना थके लगातार निरंतर उसको ढूंढने का प्रयास कर रही है. तो ललदत्त हमें ये इशारा करती है यहाँ पे कि जो नाम, रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस, इनमें प्रभु नहीं मिलता. नाम तो हम इंसानों ने दिए हैं परमात्मा के, कोई भगवान कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है. ललदत्त के कहने के अनुसार नामों में कुछ नहीं रखा, और अंत में मैंने जो पाया वो पाया कि कुछ नहीं में ही वो सब कुछ है. यानी जो मैं पूछ रही थी, जिस सच्चाई की खोज मैं कर रही थी, वो सच्चाई की खोज मुझे किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में नहीं मिला. वो खोज मेरी खत्म हुई जब मैं अपने में ही डूब गई, जब मैंने अपने आप को ही समाप्त किया. अपने आप को समाप्त करने का मतलब ये है कि जिन विचारों से मैं अपने आप को खड़ा करता हूँ, बनाता हूँ, वो विचार ही जब मैंने खत्म कर दिए और विचारों के पार चला गया तो उस कुछ नहीं में से मुझे कुछ दिखाई दिया. और साइंस भी यही कहता है कि ये जितना भी मैनिफेस्टेशन है यूनिवर्स का, ये नथिंगनेस से निकला हुआ है. ये सारा एक क्वांटम फील्ड है और उसी क्वांटम फील्ड की नथिंगनेस में से ये सारी फिजिकल वर्ल्ड की मैनिफेस्टेशन होती है.

तो बोजान एफएम नमत आशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजान रूजियो पनिन पसंदीद बात।

घर रुके थे कदम, पर सफर तवील था। मुख्तसर सी चांदनी सफर के दौरान हम सफर बनी। ठगा ठगा सा मौसम, अंगड़ाइयां लेती ये हवाएं, नाजुक यादों को अपनी पनाहों में शामिल कर मुझे रास्ता बताते, सफर को खुशनुमा बनाते, माजी के पलों को लौटाते, जो मैं उनसे लिपटता, उनको छू जाता, उनकी खामोशी तोड़ता, फिर मैं कहता, तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम ही मेरी इबादत में शामिल।

आज मौसम में ये कैसी बेचैनी है। शायद उनकी आमद का पैगाम लेकर आई है ये हवा। सदियों के फासले पल भर में मिट जाएंगे, इसका भरोसा मत करना, क्योंकि हर बार दस्तक दे चुकी है वो मेरी दहलीज पर, वो जो अपना हाल दिल बयां करने के लिए बरसों से बेताब है। शायद इसलिए यह मौसम की बेचैनी मेरे सफर में शामिल है। दश्ती तन्हाई से दामन छूटा जा रहा है, मेरी बेखुदी अब तू ही संभाल मुझे।

अब बेहतर है मौसम खिजा में चिनारों से गिरते इन पीले पत्तों को जलाया जाए और इस आग की तपिश में झुलस जाए। जिस्मों का क्या है, चलते हैं, ढलते हैं, जलते हैं, रूह लाफानी है, सिर्फ पोशाक बदलती है। जिस्मों का क्या है, चलते हैं, ढलते हैं, जलते हैं।

रास्ते ही दुश्वार पर मंजिल है करीब। दौरानी सफर जो मिले वो छूट गए, रह गए पीछे अपनी यादों के साथ। माना यादें जिंदगी का अहम सरमाया होती हैं, पर इसके बावजूद मैं जानता हूं कोई क्यों याद करे किसी को, जब जिंदगी के इस तबील सफर में रिश्तों ने अलविदा कहा हो। मुझे चुपचाप देखा जाता नहीं, अगर तेरे बस में हो तो आके मेरी तकदीर बदल दे। मुझे चुपचाप देखा जाता नहीं, अगर तेरे बस में हो तो आके मेरी तकदीर बदल

मौसम है तुम्हारी यादों का, हमें बिछड़े हुए कई युग बीत गए। इन सावन की बारिशों में भीगने का मंजर आज भी आंखों के सामने ठहर जाता है। अब जब कई सावन आए और आके चले गए, पर इन भीगती हुई बारिशों में तुम्हारे मुस्कुराने का सावन न जाने क्यों खामोश हो गया। हमसे मिलता तो होगा हूबहू अंदाज उनका, हमसे मिलता तो होगा हूबहू अंदाज उनका, तुम्हें पूछने वाले लेकिन हम जैसे ना होंगे।

कुछ तो सपने थे और कुछ हकीकत। रास्ते तो थे पर बीच रहा हम सफर, खो गए पल भर में। यहां मौसम बदलते गए और तर करते रहे मेरी आंखों की खामोशी। इस काले घने धुएं में तुम्हें से मिलने की जुस्तजू बरकरार रही और रात भर जलते रहे बुझते रहे रोशनियों के दिए। फिर धीरे धीरे मेरे तुम्हारे रास्ते सिमट गए। अब गुमनामी की इन बस्तियों में तन्हा पत्थरों को तराश कर क्या हासिल।

आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

0: पेश है कार्यक्रम माँ अनमोल, एपिसोड 2। पेश करेंगे आरजे सेजल और भरत सुपोरी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। आपका स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में, जो खास तौर से डेडिकेटेड है सभी मदर्स को। माँ एक ऐसा शब्द है जिसके बिना जीवन अधूरा सा लगता है। माँ के बारे बहुत लिखा गया है, लेकिन अभी भी उनके प्यार को बयां करने के लिए शब्द कम है हमारी शब्दावली में।
2: माँ होना ही अपने आप में एक बहुत खूबसूरत एहसास है। अपने अंदर बढ़ते जीवन को महसूस करना, गर्भ में उन नन्हे हाथों पैरों की हलचल होना, फिर उन नन्हे हाथों को अपने चेहरे पर महसूस करने का एहसास अलग ही होता है।
1: उन किलकारियों को सुनने का इंतजार तो सभी को होता है, लेकिन उन किलकारियों को दुनिया में सुरक्षित लाने का एहसास सिर्फ माँ को। इसलिए माँ का एक दिन नहीं हो सकता, क्योंकि हर दिन ही माँ का है।

0: सिर्फ माँ बनने पर ही ममता का एहसास नहीं होता, कहीं ना कहीं हर औरत में पहले से ही ममता समाई होती है। चाहे वह आपकी बहन हो, दोस्त हो, पत्नी हो, जब भी आप दुख या किसी तकलीफ में हो तो अपने प्यार, ध्यान या प्यार भरे गुस्से से ममता झलका ही देती है।
1: शायद इसीलिए बहन, भाभी, दादी, नानी, बुआ और खास तौर पर मामा, इन सभी रिश्तों को माँ का दर्जा दिया गया है, लेकिन वो दर्जा भी हासिल उन्हें निभाने से ही होता है।
0: कहते हैं माँ की एक दुआ हजार दुआओं के बराबर होती है, और दिन में ना जाने वो कितनी ही दुआएं हमारे लिए करती है, और आखिरकार भगवान भी उन दुआओं को टाल नहीं पाता, और इसीलिए शायद जब तक माँ का आंचल होता है हर दिन जन्नत सा लगता है।

0: यहाँ दुनिया में या हमारी जिंदगी में वो शख्स है जिससे जितना भी नाराज हो या लड़ लो वो कभी भी खफा नहीं होती। लेकिन हाँ, जब वो नाराज या गुस्सा हो तो उसे मनाना तो मुश्किल होता ही है, लेकिन वो दिन, वो घर और ये दुनिया उसके बिना अधूरी सी लगती है।
1: बिन कहे वो सब समझ जाती है, बिना छुए हमारा दर्द महसूस कर लेती है। जो चीज हमारी आँखों के सामने होते हुए भी नहीं मिलती उससे पलक झपकते ही ढूंढ लेती है। माँ जादूगर होती है, हर गम चुटकी बजाकर गायब कर देती है। जब कुछ खाने का मन ना हो तो अपने हाथों के स्वाद से पेट भर देती है।
0: कुछ भी कहो, माँ होती तो कमाल है। इसीलिए भगवान भी धरती पर आते हैं तेरा प्यार पाने को, बच्चा बन तेरी गोद में सो जाने को, तेरे हाथ का खाना खाने को, नटखट शैतानियां कर तुझे हंसाने को, डर के तेरे आंचल में छुप जाने को, शरारत कर तुझसे डांट खाने को, निस्वार्थ प्रेम की शिक्षा तुझसे पाने को।

0: आज का ये फलसफा था माँ के नाम, और ये जिंदगी तो है और थी उसी के नाम। अब इस फलसफे का अंत करते हैं एक छोटी सी कविता के साथ जो माँ के नाम है।
1: जब भी दुख के साए ने घेरा, माँ के आंचल ने मुझे समेटा। जब भी पकड़ी गलत राह, तो खींच मुझे सही राह पर भेजा। जब गलत सही का बोध नहीं

आप सुन रहे थे कार्यक्रम माँ अनमोल एपिसोड 2, पेश किया आरजे सेजल और भारत सोपोरी ने, रिकॉर्ड एडिट व कविता मौलिक आरजे सेजल, निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

विश है कार्यक्रम इनसे मिलिए एपिसोड 8। हमारे आज के मेहमान हैं श्रीमती दीपाली मल्होत्रा जी, प्रस्तुत करेंगे श्री भारत सपोरी।

0: नमस्कार, आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके साथ मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, लेके आया हूं आज का कार्यक्रम FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और हर साल एक खास थीम को एक्सेप्ट और फॉलो किया जाता है। आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही हैं एक महिला जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही हैं, कई MNCs में काम करने का अनुभव भी अर्जित किया है। आइए आपको मिलाते हैं आज के आमंत्रित मेहमान से इस खास दिवस पर। आपका स्वागत अभिनंदन दीपाली मल्होत्रा जी।
1: नमस्कार सपोरी जी, अंबाला की ऑडियंस को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद आपने ये मौका दिया मुझे आज सबसे बात करने का। मैं पिछले 15 साल से IT सेक्टर में काम कर रही हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। प्रश्नों की शुरुआत करते हैं आपसे, हमने आज बहुत सारे प्रश्न करने हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, खास करके महिलाएं, उनके लिए आज हम इस कार्यक्रम में एक दिशा दे पाएं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति में नारी को बहुत महत्व दिया गया है और कहा जाता है जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। आज की नारी जो कंधे से कंधा मिला के काम करती है और अपना वजूद भी बना रही है, आप इसको कैसे देखते हैं?
1: भारतीय संस्कृति में बहुत अच्छा, जैसे आपने बोला, नारी को देवी की जगह दी गई है। बट जैसे जैसे साल गुजरते गए, मुझे लगता है वो नारी की जगह उसको वहाँ पे एक पेडेस्टल पे, जिसे हम कहते हैं, एक बड़े ओहदे पे बिठा के एक कोने में कर दी गई। और इसी तरह औरतें अंदर ज़्यादा रहने लग गईं, उनको कई कामों में इंक्लूड नहीं किया जाता था, बाहर की कई क्षेत्रों में उनको काम नहीं दिया जाता था। जैसे जैसे अब दुनिया आगे बढ़ रही है, शिक्षा की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल रही हैं, वैसे वैसे मुझे लगता है कि महिलाओं को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, हर जगह उन्हें मौका दिया जा रहा है। तो दुनिया एक अच्छी तरफ जा रही है और हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि ये मौके हम और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं।
0: और मैं भी आपको अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि जो महिलाएं जो भी कार्य करती हैं आज किसी भी स्तर पर, और वो अपने आप को अच्छे से साबित भी कर रही हैं, यानी जो हमारा समाज है इसमें आने वाले दिनों में हमारी बराबरी होनी बहुत ज़रूरी है। जबकि अभी बराबरी नहीं है, पर हम उस पथ पर चल पड़े हैं और अगर हम सब लोग कोशिश करेंगे तो हम इस लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकेंगे।
1: बिल्कुल।
0: आपने कई MNCs में अपनी सेवाएं दी हैं, जैसे एक्सेंचर, TCS, इन्फोसिस। क्या आपके अनुभव हैं, हम जानना चाहेंगे और हमारे श्रोता भी। और आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर आप वुमन पावर को कैसे देखते हैं और कैसे आप उनको प्रेरित करेंगे?
1: मेरा ये जो एक्सपीरियंस रहा है प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर के साथ, इसने मुझे बहुत बहुत मेरा, जिसे कहते हैं, आउटलुक, इसको ज़्यादा ब्रॉड किया है, आप कह सकते हैं। सो मैं अंबाला से ही हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ, यहीं पे स्कूलिंग हुई, यहीं पे इंजीनियरिंग हुई। बट इसके बाद जो मुझे मौका दिया इन कंपनीज ने, अलग अलग शहरों में इंडिया के रहने का और अलग अलग देशों में ट्रैवल करने का, उससे मुझे लगता है मुझे बहुत कल्चर्स का पता चला और एक, जिसे कहते हैं, नज़रिया बहुत ब्रॉड हो गया। इन कंपनीज में और भी जो महिलाएं काम कर रही हैं, अंबाला के बहुत लोग हैं जिनकी बेटियां, बहुएं आजकल बाहर काम कर रही हैं, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ नौकरी करने की नहीं मगर नेतृत्व वाले रोल्स, जिसे हम कहते हैं लीडरशिप रोल्स, लेने की भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो सिर्फ नौकरी नहीं कर रही हैं महिलाएं, एक करियर बना रही हैं, और दोनों बातों में फ़र्क है। जो आपको पसंद है आप उसमें आगे बढ़ते हैं, आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिलाके वाला जो चीज़ है वो आज आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में देखने को मिलता है। हमारे लीडर्स हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं, विमेन के लिए मौके दे रहे हैं, एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ है कॉर्पोरेट सेक्टर में आजकल, कई महिलाएं उन्हें ब्रेक लेना पड़ता है जब बच्चा हो जाता है 1-2 साल का, क्योंकि बच्चा देखने के लिए उनके पास हेल्प नहीं होती है कई बार घर पे। ऐसी महिलाओं के लिए रिटर्निंग मदर्स प्रोग्राम तक शुरू हो रहे हैं कई कंपनीज में और ज़्यादातर टेक्नोलॉजी कंपनीज में हो रहे हैं। उससे क्या है, इन औरतों को जिन्होंने करियर ब्रेक ले लिया है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, वो वापस दोबारा आ जाती हैं और उनको फिर से थोड़ी ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि वो अपने आप को यू नो पीछे ना समझे बाकियों से। ये जो 3 साल का उनका गैप पड़ा है किसी महिला का, उनको थोड़ी ट्रेनिंग देके वापस शामिल कर लिया जाता है मेन स्ट्रीम वर्कफोर्स में। तो ये मुझे लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं महिलाओं के लिए आजकल प्राइवेट सेक्टर में।
0: ये इसलिए भी हो सकता है कि जो कार्य वो कर रही होती हैं जब वो लीव पर जाती हैं, ताकि जब वो वापस आ जाएं तो वो और ज्यादा तरीके से उस काम को अंजाम दें। इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन मैं आपसे, एक प्रश्न आपसे करना चाहूंगा, वो ये है, क्या निजी कॉरपोरेट क्षेत्र में महिलाओं के लिए यह एक रोमांचक समय है?
1: जी हाँ बिल्कुल, मुझे यही लगता है कि बहुत रोमांचक समय है। पहले एक विचारधारा होती थी जब हम बड़े हो रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर में काम करना शायद महिलाओं के लिए मुश्किल है, जो घंटे लगाने पड़ते हैं वो ज़्यादा है, इससे ज़्यादा अच्छी सरकारी नौकरी है, बैंक की नौकरी है, या एक स्त्री शिक्षक क्यों नहीं बन जाती, स्कूल में टीचर बन जाओ, कॉलेज में टीचर बन जाओ। मेरे अपने पेरेंट्स प्रोफेसर्स हैं, सो मैं किसी के यहाँ वो नहीं कर रही हूँ कि टीचर होना अच्छी बात नहीं है, मगर मेरे कहने का मतलब है, एक थोड़ा सा हमें, जब मैं भी बड़ी हो रही थी, आइडिया दिया जाता था कि प्राइवेट सेक्टर में काम करना कॉर्पोरेट सेक्टर में मुश्किल है, तो वो आज नहीं रहा। आज मुझे लगता है आजकल की लड़कियाँ महिलाएं, उनको लगता है कि हम ये कर सकते हैं और वो कर रही हैं। पहले होता था कि कई जगह जहाँ ट्रैवल रिलेटेड काम होता था वो हम कहते थे सिर्फ पुरुष करेंगे, औरतें थोड़ी ट्रैवल कर सकती हैं, ऑड आवर्स का काम, नाइट शिफ्ट्स हैं, लड़कियां थोड़ी कर सकती हैं। मगर पिछले अगर आप देखिए 10 से 15 साल में असली यू नो चेंज आया है हमारे ये वर्क प्लेस पे, जहाँ महिलाएं नाइट शिफ्ट्स भी कर रही हैं, महिलाएं ट्रैवल कर रही हैं। मैं खुद कई देशों में ट्रैवल करके आई हूँ, काम करके आई हूँ, और अलग अलग शहरों में जाके यंग लड़कियां जाके जॉब्स ले रही हैं और काम कर रही हैं, सक्सेसफुल हो रही हैं, माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं। तो मुझे लगता है बहुत रोमांचक टाइम है कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने का, और कॉरपोरेट सेक्टर की भी बहुत सपोर्ट है, क्योंकि मैं अपनी कंपनी में भी काफ़ी इस चीज़ में जिम्मेदारी निभा रही हूँ, और हम लोग देखते रहते कि कैसे सपोर्ट किया जाए उन औरतों को जो अलग अलग जिनको ज़रूरतें हैं, ताकि वो काम करती रहें और काम में आगे बढ़ती
0: मेरे मन में यही प्रश्न बन रहा था कि मैं आपसे ये पूछूं कि जब एक महिला या एक युवती नाइट शिफ्ट भी करती है तो क्या उनके जो एम्प्लॉयर हैं, क्या वो इस तरीके का अरेंजमेंट करते हैं कि जब वो रात के 12 बजे या 1 बजे शिफ्ट खत्म करें, क्या उनको घर तक कुछ ऐसी सुविधाएं दी जाती है ताकि वो सेफ घर पहुंच सकें और अगले दिन फिर काम पे आ सकें, या क्या उनके उस कार्यालय में रात भर रहने के लिए क्या कुछ ऐसे इंतजाम किए जाते हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो?
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं आईटी सेक्टर में हूँ, यूजुअली आप जोड़ते हैं इस टाइप का नाइट का काम कॉल सेंटर से,
0: ठीक है,
1: मन में ये धारणा होती है, मगर इवन आईटी में हमारे कई प्रोजेक्ट्स रात तक चलते हैं। मैं खुद घर सुबह के 3 बजे भी आई हुई हूँ, 1 बजे भी आई हुई हूँ। हमारी जो कंपनी थी उस टाइम इन्फोसिस, वो हमें कैब देती थी, उसमें एक गार्ड साथ में बैठता था, जिस और हमें घर के डोर पे ड्रॉप किया जाता था। जब तक हम गेट के अंदर ना चले जाएं, वो गाड़ी भी रोक के रखते थे कि गाड़ी से उतरने तक, गेट के अंदर जाने तक, और फिर वो आ जाते थे। और इस सब की पूरी एंट्रीज होती थी कि ये एम्प्लॉई आज रात को लेट जा रही हैं, मेरी नाइट शिफ्ट नहीं थी बट किसी दिन एक्स्ट्रा काम के लिए रुकना पड़ता था। सो इसी तरह और कंपनीज भी पूरा ध्यान रखती हैं। जब मैं एयर ट्रैवल करती थी TCS में, तो 8 बजे के बाद अगर मेरी फ्लाइट पहुंच रही है तो कंपनी कैब मुझे लेने आती थी, पुरुषों को नहीं, वो अपनी टैक्सी करते थे, बट मान लिया जाता था कि कंपनी से कैब आ रही है तो ज्यादा सेफ है, तो इसलिए औरतों के लिए 8 बजे के बाद। तो ये कुछ कुछ मुझे लगता है पॉलिसीज कंपनीज ने करी हुई हैं ताकि औरतें सेफ फील करें, वो बिल्कुल वैसे ही काम कर सके जैसे पुरुष करते हैं कंपनीज में।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई और ये हमारे समाज के लिए एक आई ओपनर है और हमारी जो देश की युवतियां हैं या महिलाएं हैं वो बहुत ही अच्छे माहौल में जाके अपना कार्य कर सकती हैं। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे श्रोता हैं उनको इस वार्तालाप से बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम है इंस्पायर इंक्लूजन, जो एक ऐसी दुनिया की मांग करती है जहां हर किसी की रिस्पेक्ट हो और वैल्यू भी हो। आपने अपने कार्यकाल में 5 कॉन्टिनेंट्स में लार्ज स्केल ट्रांसफॉर्मेशंस की है, कैसे इस साल के थीम को सुचारू रूप से लागू किया जा सकता है?
1: जी हाँ, मैं बड़े सालों से इस तरफ काम कर रही हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर में, जिसमें हम देखें कि कैसे हम महिलाओं का इंक्लूजन, जिसे हम कहते हैं इंक्लूजन यानी सम्मिलित करना उन्हें हर काम में, उस पे हम ध्यान दे सके। इससे रिलेटेड बहुत अच्छी बात है, इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम भी यही है, इंस्पायर इंक्लूजन, मतलब कि हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि महिलाओं को हम सम्मिलित करें, हम आर्थिक तरीके से उन्हें सम्मिलित करें, हम शिक्षा में उनको सम्मिलित करें, हम उनको उनकी सेहत रिलेटेड जितनी भी अवेयरनेस क्रिएट करनी है, महिला रिलेटेड कोई सेहत के इश्यूज़ हैं, बीमारियाँ हैं, उसमें हम उन्हें वो मौका भी दें, तो कई तरह से उन्हें हम सम्मिलित करें
0: या एक ऐसा वातावरण दिया जा सके जिसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आ
1: सके, बिल्कुल कर सके। और इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है जिसपे मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दूंगी अभी आपको। हम औरतों को जॉब्स पे रख तो लेते हैं, मगर क्या जो मेन काम है जिनमें डिसीजन करना है बिजनेस के बढ़ावे का या कोई बड़ी इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी जॉब की देनी है, क्या हम अपने मन में ये सोचते हैं कि ये काम पुरुष को ही दिया जाए, ये लेडी पता नहीं कर पाएगी कि नहीं। सो इस विचारधारा से आगे बढ़ के महिलाओं को हर काम में सम्मिलित करना बड़ा जरूरी है। जैसे कि इस रेडियो प्रोग्राम में आपके यहाँ तो महिलाएं हैं, मुझे पता है जो काम करती हैं, मगर ऐसा सोच लीजिए कि आपको एक नया प्रोग्राम लॉन्च करना है 90s के गीत और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होगा ये, और उसकी आप एक टीम बना रहे हैं, 3 लोग की टीम
0: जी।
1: तो क्या आप सोचते हैं मेरा बहुत इम्पोर्टेंट काम है ये और इसमें मैं ये मेरे पुरुष लोग बड़े अच्छे से कर लेंगे, बट आप ये देखिए कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है इंसान की, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, और आप वैसी टीम बनाएं। और एक और अच्छी बात ये है, अगर एक टीम में जैसे ये 3 लोग की टीम हमने बोली जो प्रोग्राम बनाएगी, इसमें पुरुष और महिला होंगे तो महिलाएं महिलाओं का जिसे कहते हैं पर्सपेक्टिव लेके आएंगी, पुरुष पुरुष की तरफ से पर्सपेक्टिव लेके आएंगे। सो वो जो एक आपका पर्सपेक्टिव ही बढ़ गया, जो आज तक दुनिया चल रही थी क्योंकि ज्यादा पुरुष ही काम कर रहे थे उन्हीं का पर्सपेक्टिव चलता था, अब महिलाओं के हर काम में आने से ये चीज पे बहुत हमारे इन्फ्लुएंस हुआ है मैं कहूंगी, और इससे हर काम बेटर हो सकता है।
0: मुझे खुशी है इस बात की कि आपने एक ऐसा इशू जो है वो डिस्कस किया है, उसके संदर्भ में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि FM 90.0 पर जितने भी विमेन सेंट्रिक कार्यक्रम हम बना रहे हैं या जो बना चुके हैं, उसमें एक कार्यक्रम है नारी एक दर्पण या और भी अन्य कार्यक्रम है, और वो हमारी जो स्टूडियो में महिलाएं हैं या युवती हैं वो ही उन प्रोग्राम्स को करती हैं, और वो क्योंकि उस दृष्टिकोण से शायद और अच्छे से समझ पाती हैं, तो ये बहुत जरूरी है। और भारत सरकार की भी ऐसी नीति है कि जब भी कोई भी कार्यस्थल जो कि खास करके भारत सरकार के अधीन है, वहां पर जो काम करने वाले हैं वो महिलाएं ज्यादा हों।
1: इस बात पे मैं आपको बधाई देना चाहूंगी, बिकॉज आपकी शुरुआत और आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही मार्ग पे चल रहे हैं मैं कहूंगी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। श्रोता हमारी बात सुन रहे हैं और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा चेंज किया जाए, और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके जीवन में संगीत कितना मायने रखता है?
1: संगीत मुझे लगता है बहुत अच्छा मायने रखता है, क्योंकि बचपन से हमारे घर में रफ़ी साहब के गाने, किशोर कुमार के गाने चला करते थे, तो मेरे पेरेंट्स को बहुत शौक़ है सुनने का। हम बड़े हुए तो हमने अपने युग के गाने सुने, इंग्लिश गाने भी सुने, पंजाबी भी सुने, हिंदी बॉलीवुड तो सुने ही सुने तो बिल्कुल बहुत तरह के सुनती हूँ।
0: मैं चाहता हूँ कि आपका कोई मनपसंद गीत हो जो हम आपको और श्रोताओं को सुनाएं, और अगर आप उस गीत को गुनगुना भी सकें तो श्रोताओं के लिए और हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। कौन सा गाना आप इस समय श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे?
1: मैं एक मेरे बचपन का पसंद था मुझे गाना, वो सुनाना चाहूँगी। पुराना गाना है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। और क्यों पसंद था ये भी बताना चाहूँगी। इसमें माउथ ऑर्गन यूज़ हुआ है इस सॉन्ग में, और वो बड़ा यूनिक मुझे लगता था, बिकॉज और सॉन्ग से बिल्कुल अलग था ये गाना। इसलिए मेरी कुछ यादें हैं, मुझे उस टाइम बहुत पसंद था जब मैं एक छोटी बच्ची थी, तो वही मैं आप ऑडियंस को आज सुनाना चाहूंगी। एक लाइन सुना देती हूँ आपके कहने पे।
0: जी।
1: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू,

0: स्वागत आपका ब्रेक के बाद दीपाली जी। दीपाली जी आप मार्गदर्शक हैं सोसाइटी फॉर साइबर अवर सिक्योरिटी काउंसिल, कृपया विस्तार से बताएं हमारी श्रोताओं को और क्या ये सही दिशा है महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए।
1: जी हाँ सपोरी जी, पिछले 8 साल से मैं हैदराबाद में रह रही हूँ अपने पति और बच्चों के साथ। हैदराबाद में एक ये इनिशिएटिव है तेलंगाना पुलिस, हैदराबाद पुलिस स्पेसिफिकली, उन्होंने एक सोसाइटी बनाई है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। इसका नाम है सोसाइटी फॉर साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल। इस सोसाइटी का काम है कि वॉलंटियर्स उठाना, पढ़े लिखे वॉलंटियर्स समाज में से। ये वॉलंटियर्स मेरे जैसे लोग हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं। हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है 2 महीने तक। हमें बताया जाता है कई लॉस के बारे में जो कानून है, आईपीसी की धाराएं हैं महिलाओं की हेल्प के लिए, बच्चों की हेल्प के लिए। और हमें बताया जाता है कैसे गाइड करें, काउंसलिंग करें उन महिलाओं की जो घर में डोमेस्टिक वायलेंस से परेशान है, या डाउरी रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, या सेक्सुअल हरासमेंट मोलेस्टेशन के केसेस हैं, या फिर इवन साइबर फ्रॉड्स विमेन के साथ बहुत हुए हैं तेलंगाना में भी, इंडिया में भी। इस तरह की कई चीज़ें कवर करके 2 महीने हमें ट्रेन किया जाता है। कमिश्नर ऑफ पुलिस आते हैं सेशंस लेने। और हमारा काम ये है कि अगर समाज में कोई महिला है, उनके साथ ये हो रहा है बुरा, एकदम से वो पुलिस के पास नहीं जाती हैं,
0: ठीक है,
1: उन्हें किसी का सहारा चाहिए कि कोई उन्हें गाइड करे। सबसे पहले उनकी बात सुने और उन्हें गाइड करे। और पुलिस, वकील, इन सब से लोग डरते हैं शुरू में उनसे बात करने में। तो अगर हमें किसी केस का पता चलता है, जैसे मेरे पड़ोसी थे, उनकी कोई जानने वाली थी, डॉक्टर थी लेडी, उनका केस पता चला, उन्होंने मेरे से कनेक्ट किया और मैंने उनकी पूरी बात सुनकर उन्हें आगे क्या कर सकते हैं, अब मैं उसके बारे में बताती हूँ। सो वहाँ ये जो सोसाइटी फॉर साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल है, पुलिस के साथ मिलके भरोसा सेंटर है या काउंसलिंग सेंटर्स उन्होंने सेटअप किए हुए हैं, ताकि जिसके घर में प्रॉब्लम है उनकी फैमिलीज को बुला के काउंसलिंग की जाती है। पहले बहुत महीनों तक ट्राई किया जाता है कि जो घर की प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सॉल्व करें,
0: ठीक है,
1: ना कि तलाक करा दें
0: जी,
1: हस्बैंड वाइफ की अगर प्रॉब्लम है तो। सो सारे चाहते हैं कि अच्छा ही कुछ निकले पूरी बातचीत में से। अगर नहीं हो पाता तो फिर उन्हें वकील से कनेक्ट करते हैं, अगर बिल्कुल ही केस खराब है तो। सो इस तरह से उनकी हेल्प रहती है और ये सब गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड है। सो महिलाओं को, और एकदम अगर उन पे कुछ अत्याचार करा जा रहा है घर पे, उन्हें घर छोड़ना है तो वो कहाँ जाएं? कई बार माँ बाप की सपोर्ट नहीं होती इन केसेस में। बहुत केसेस में मैं कहूंगी ऐसे हमें पता चले हैं माँ बाप सपोर्ट नहीं करते हैं शादी के बाद।
0: यानी कि जो ये वॉलंटियर्स है, ये एक तरीके से पुलिस के मार्गदर्शन में लोगों को सचेत करते हैं, उनको दिशा देते हैं ताकि वो अपने हक के लिए भी बात कर सके और उसमें उन महिलाओं का उत्थान भी होगा और खास करके उनके साथ जो जुड़े बच्चे भी हैं। तो क्या मैंने सही समझा?
1: बिल्कुल सही समझा। और जैसे मैंने कहा, कोई महिला को एकदम से घर छोड़ना है, कुछ ऐसा ही सिचुएशन आ गया, उसे अपनी जान पे खतरा लग रहा है, बच्चे की जान पे खतरा लग रहा है, सो भरोसा सेंटर होगा वहां है बने हुए हैदराबाद में, वो वहां जाके रह सकती हैं कुछ दिन तक, जब तक कि अगला वो क्या करें वो सोचती हैं। सो मगर इन बातों का पता नहीं होता, या अगर आप न्यूज में भी पढ़ेंगे आप भूल जाएंगे, क्योंकि हमारी लाइफ में हमें नहीं जरूरत। मगर मार्गदर्शक जो अब फैले हुए हैं पूरे शहर में, वो समाज में ये बातों का बताते हैं लोगों को जो पीड़ित महिलाएं हैं, और उनको हेल्प करते हैं। और इससे बहुत, एक आप मानेंगे नहीं कि कई महिलाएं जो आत्महत्या करने पे आ जाती हैं, उन्होंने बाद में बोला है कि हम आत्महत्या नहीं की क्योंकि उस टाइम किसी ने हमारी बात सुनी और हमें हेल्प किया। सो बहुत बहुत ये मुझे लगता है शक्ति देता है महिलाओं को, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मुझे लगता है पूरे इंडिया में इस टाइप का प्रोग्राम पुलिस के साथ पार्टनरशिप में होना चाहिए।
0: मैं आपको बधाई देता हूँ, और खास करके आप कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हुए आप सोशल वर्क भी करती हैं, और जो आपको विरासत में मिला है, जो आपके पिताजी डॉक्टर वी के मल्होत्रा जी हमेशा लोगों के लिए रहते हैं और वो उनके मदद के लिए सामने आते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। और साथ में आपने एक चीज और भी सिद्ध की कि कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं और साथ के साथ आप अपने जो आपकी इंस्टीट्यूट है जहां आप काम करते हैं और उनका भी आप काम करते हैं। इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक छोटा सा प्रश्न मैं और करना चाहूंगा, महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण क्या है?
1: जी हाँ, हम सोचते हैं सपूरी जी कि एक महिला ने नौकरी कर ली या अपना बिजनेस कर लिया तो ठीक है, उसने पैसे कमा लिए, बट ये जो हम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करते हैं ये मुझे लगता है तभी आती है जब जो पैसा महिला कमा के ला रही है उसे क्या वो अपने हिसाब से खर्च पा रही है, फैसला उसका है या परिवार का है। अब मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने परिवार की तरफ खर्चा कंट्रीब्यूट करने में, बच्चों के ऊपर खर्चने में बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस खर्चों के बावजूद क्या औरत अपना डिसीजन ले पा रही है कि वो अपना पैसा पर्सनल सेविंग कहाँ करे, क्या वो सेव कर भी पा रही है अपने लिए या वो ज्वाइंट अकाउंट में सेव कर रही है। अभी भी हमें इंडिया में कई केसेस सुनने में आते हैं जिसमें औरत कमाती है और सारा पैसा आके पकड़ा देती है अपने हस्बैंड को, मोस्टली हस्बैंड को ही, और कोई बुरी बात नहीं है कि वो डिसाइड करे, आपको हेल्प करें डिसाइड करने में, मगर अगर आप पढ़े लिखे हैं आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने फाइनेंसेस भी मैनेज करें। मुझे लगता है जब लड़कियों को एजुकेशन दी जाती है उन्हें साथ में ये बताना भी चाहिए कि ये पैसे को आपको मैनेज करना भी आना चाहिए। अब आपने कमा तो लिया, आपको सेव भी करना है, आपको अपनी टैक्स फाइल भी करना है, आपको ये भी सोचना है कितना खर्चना है कितना सेव करना है, ठीक है,
0: ताकि आने वाले दिनों की जरूरत भी पूरी
1: हो सके। बिल्कुल, और इसमें आप बिल्कुल आप सलाह मशवरा कीजिए अपने हस्बैंड के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, जिसके करना है आप करिए, मगर डिसीजन औरत के अगर हाथ में है तो ही वो एम्पावर्ड है। मगर एक क्लॉज मैं ऐड कर दूं यहाँ, इसका ये मतलब मत लीजिए कि मैं अभी जाऊं और पैसे जो है कला मंदिर या जारा पे खर्च कराऊं। तो कई बार हम ये मतलब ले लेते हैं कि महिलाओं के हाथ में पैसा होगा तो सारा कपड़ों पे चला जाएगा। तो ठीक है, हर महिला को अपनी पसंद की चीजें खरीदने का अधिकार है, मगर यही विजडम है कि हम अपनी जितना भी फाइनेंशियल डिसीजंस हैं अगर वो महिला के हाथ में है तभी वो पूरी तरह एम्पावर्ड है।
0: यानी कि एक महिला आर्थिक तौर से सशक्त तब हो सकती है जब कोई भी फैसला लिया जाए उसमें उनका श्रेय होना जरूरी है।
1: बिल्कुल, और एक यहाँ पे मैं लाइन ऐड करूंगी, जब भी हम इस तरह की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि पुरुष उन्हें ये नहीं करने दे रहे इसलिए वो बिचारी महिलाएं नहीं कर पा रही। यहाँ पे मैं क्लियर करूंगी बात, और मैं कई कई जगह पे जब विमेन रिलेटेड बातें करती हूँ मैं हमेशा मानती हूँ कि पुरुष हमारे साथी होते हैं, और मुझे बहुत केसेस में लगता है कि गलत नहीं होते हैं वो, कई बार महिलाएं ही ये नहीं करना चाहती, इसीलिए मैंने बोला कि महिला अगर वो पढ़ी लिखी हैं क्या वो ये कर रही हैं, या हमेशा ये सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज आदमी पे डाल दी जाती हैं, अच्छा अपनी टैक्स फाइल करो मेरी भी कर देना। सो महिलाओं को ये खुद करना है, ये करने में टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, और वो भी महिलाओं को अपने लिए निकालनी है और तभी वो पूरी तरह से मुझे लगता है एम्पावर्ड हो सकती हैं।
0: मैं आपको एक इसी स्टूडियो का एक उदाहरण देता हूं, जब कभी मैं या टीम मेंबर यहाँ पे नहीं होते हैं तो जो हमारी संस्था है जो उसकी अध्यक्ष है वो मेरी धर्मपत्नी है, और मेरी एब्सेंस में या टीम की एब्सेंस में वो मॉर्निंग में उठ के ये सारे सिस्टम्स ऑन करके रेडियो को सही समय पर सुचारू रूप से शुरू करती हैं। तो हमें सिर्फ एक ये काम करना पड़ेगा, पुरुषों को भरोसा रखना पड़ेगा अपने परिवार पर, और परिवार में जितनी भी महिलाएं हैं या किसी ऑफिस में अगर हम उन पर विश्वास रख सकेंगे तो वो भी उतना ही काम कर सकेंगे जितना हम करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, एक महिला होने के नाते आपसे जानना चाहेंगे कि किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है महिलाओं को और क्या निवारण है जब आप कार्यस्थल पर होते हैं। आपसे ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में एक्टिवली एंगेज्ड हैं अवेयरनेस के लिए।
1: जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल रही हैं महिलाओं को
0: जी,
1: मगर ये भी जरूरी है अगर एक महिला एम्प्लॉई है किसी भी कंपनी में हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो, मुझे लगता है आपको अपने काम के प्रति जैसे कहते हैं ट्रूथफुल हम कहते हैं, या बिल्कुल आपको भी दिखाना है कि मैं ये जिम्मेदारी ले सकती हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो हम उस युग में से निकल रहे हैं जब हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज खुलती जा रही हैं, सो बहुत अच्छा, बहुत रोमांचक टाइम है जिसे हम बात कर रहे थे, मगर इसके साथ साथ हर मोड़ पर एक महिला को फिर भी ये विश्वास दिलाए रखना है अपने ऑफिस में भी कि हम भी ये काम कर सकते हैं। आप कई बार हम ये सोच के पीछे हट जाते हैं कि हमें अपने आप काम मिलेगा, कुछ तो हम करेंगे, या कुछ बहुत अच्छा टीम वर्क होने लगा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव हो रहा है, तो आप मांगिए कि मुझे भी इसका हिस्सा बनाइए। एक तो ये बात है, कई बार हम लोग चुप होके पीछे बैठ जाते हैं तो उसमें भी हमें इंक्लूजन जो हम बात कर रहे थे सम्मिलित नहीं किया जाता। अगर फिर भी आपको किसी टाइम पे ऐसा लगे कि आपके लिए कुछ सेफ नहीं है तो बोलिए, उसे करिए मत,
0: बात करिए
1: आवाज उठाइए, और बहुत हद तक मैं कहूंगी वो बात का सोल्यूशन निकलेगा, आपको हेल्प की जाएगी। मगर आप चुप रह जाएंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, और आपके मन में भी ये होगा कि मैं ये करूं कि ना करूं, मैं लेट ट्रैवल करूं कि ना करूं, मैं मुझे ये अगर हेल्प करें तो मैं कर लूंगी, अगर कोई मुझे आश्वासन दे दे कि हाँ जैसे मैंने बताया कि कंपनी कैब आएगी तो मैं कर लूंगी ट्रैवल, सो वो सब आप बात करके खोलें, अपने से रिलेटेड जो भी आपको चाहिए हेल्प आप मांगे,
0: और तभी उसका समाधान मिल पाएगा।
1: बिल्कुल। और तीसरा, जैसे एक एग्जांपल ही है, आजकल मेंस्ट्रुअल लीव की बात भी करी जा रही थी कि मैटरनिटी लीव तो होती है जब बच्चा हो तो माओ को, आजकल गवर्नमेंट का भी वो है पॉलिसी है कि आपको देनी ही देनी है 6 मंथ्स की लीव, तो बात ये थी कि मेंस्ट्रुअल लीव के टाइम हर महीने अगर कॉरपोरेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर देने लग जाए तो प्रोडक्टिविटी नीचे चली जाती है क्योंकि लोग कम हो जाएंगे काम करने के लिए, तो उस पर भी बात चल रही है और कई पहलू हैं। थोड़ा मुश्किल है इसको करना, अगर आप देखें आसान नहीं है इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, मगर मुझे लगता है जहां चुनौती होती है वहां कुछ
0: रास्ता भी निकल
1: जाता है। तो निकलते ही हैं, तो वो रास्ता जरूर निकलेगा, बहुत जल्द निकलेगा शायद, और हम फिर शायद अगली टॉक शो में उसके बारे में भी बात कर रहे होंगे।
0: बट मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत सरकार भी इस समय इन विषयों पर बहुत दिल से बात कर रही है, और मैं ये आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में जहां इतनी सुविधाएं महिलाओं के लिए इस समय कार्य क्षेत्र में है तो ये भी लागू हो सकता है, चाहे उसके दिन कम हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हम एक बार फिर संगीत की तरफ जुड़ते हैं, और जैसे हमने अभी बात की थी कि आपकी जिंदगी में संगीत का एक बड़ा स्थान है, तो एक बार फिर हमारे पास गुंजाइश है कि हम आपसे एक और गाने की फरमाइश करें, और आप ये बताएं कि आपका पसंदीदा गाना कौन सा है, या कोई और गजल हो या गीत हो, ताकि हम श्रोताओं को सुनाएं।
1: जी हाँ सपूरी जी, गीत तो मैं सुनती ही हूँ, उसके साथ साथ मैं पिछले कुछ सालों से गुरबानी से भी जुड़ी हुई हूँ और पाठ करती हूँ, शब्द सुनती हूँ, सो मैं चाहूंगी आप अपने ऑडियंस को आज सुनाएं मूल मंत्र जो कि है एक ओंकार सतनाम।
2: एक

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। हम इस कार्यक्रम के अंतिम दौर में हैं दीपाली जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी हॉबीज क्या क्या हैं।
1: मुझे मधुबनी आर्ट का शौक है। ये आर्ट फॉर्म बिहार साइड से है और ये तब की जाती थी श्री रामचंद्र और सीता जी के युग में, माना जाता है कि तब से शुरू हुई हुई है ये आर्ट फॉर्म। बड़ी बारीक पेन से या कलम से की जाती है। सो ये आर्ट फॉर्म का शौक है और इसी से मिलता जुलता एक मंडाला आर्ट होता है, वो भी मुझे शौक है करने का।
0: यानी आप कॉरपोरेट जगत में काम करने के साथ साथ आप महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए भी काम करती हैं और साथ में आप एक आर्टिस्टिक नेचर की भी हैं और मधुबनी आर्ट आपको बहुत पसंद है। आप एक कामयाब प्रोफेशनल होने के साथ साथ एक माँ भी है दो बच्चियों की, घर गृहस्थी और प्रोफेशन में बैलेंस कैसे बनाती हैं आप? इस साल का वुमेन्स डे का थीम आप अपनी जिंदगी में कैसे देखते हैं?
1: बैलेंस की बात हम कई बार करते हैं, बैलेंस बिल्कुल काम में और हमारी पर्सनल लाइफ में, मगर मैं बता दूं सुपोरी जी, बैलेंस रोज़ 50-50 नहीं होता है। किसी दिन 90% काम होता है और 10% घर होता है और किसी दिन 80% घर और 20% काम पे भी चल जाता है। तो ये जो एक 50-50 मुझे लगता है, औरत कोई भी महिला अपने आप को इस प्रेशर में ना डाले क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ 50-50 पे कभी नहीं चलती है। मगर हाँ, जब आप देख सकें जिस भी समय आप जिस तरह से उसको बैलेंस करना चाहें, और हर घर की अलग कहानी होती है, मगर ज़रूर करें। और दूसरी बात, अपने लिए समय ज़रूर निकालें, चाहे आप कामकाजी महिला हैं चाहे आप घर पे रहने वाली महिला हैं, आप दोनों, हर महिला को अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए जिसमें जो आपको पसंद है आप वो कीजिए। उससे आप बहुत फ्रेश फील करेंगे, आपको लगेगा कि जैसे ये मेरा टाइम है, मेरे फैमिली का नहीं है, बच्चों का नहीं है, हस्बैंड का नहीं है, काम का नहीं है,
0: वो एक्सक्लूसिवली आपका है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और आपको बहुत अच्छा फील होगा अगर आप करेंगे तो।
0: मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोता, खास करके जो महिला श्रोता हैं, उनको ये सुन के बहुत अच्छा लगा होगा कि आप जितना भी कार्य घर में करती हैं तो आप अपने लिए भी कुछ समय जरूर निकालें। एक अंतिम प्रश्न आपसे करना चाहूंगा, वो ये है कि क्या उच्च शिक्षित और पेशेवर कामकाजी महिलाएं घरेलू हिंसा से सुरक्षित हैं?
1: हम हमेशा सोचते हैं कि कोई महिला अगर पीड़ित है तो ऐसे घर में होगी जहाँ गरीब घर होगा, पढ़े लिखे नहीं होंगे, इसीलिए इस तरह के काम करते होंगे
0: जी।
1: मगर जब से मैं मार्गदर्शक ग्रुप के साथ जुड़ी, हमें बड़े केसेस ऐसे बताए गए, कमिश्नर ऑफ पुलिस ने बताए और मैंने भी जो केसेस हैंडल किए, वो बिल्कुल सिर्फ पढ़े लिखे नहीं, प्रोफेशनल डिग्री होल्डर महिलाओं के घरों में हुई हैं। वो डॉक्टर हैं, वो अकाउंटेंट हैं, वो खुद वकील हैं, मगर फिर भी वो पीड़ित हुई हैं किसी ना किसी वजह से। सो ये नहीं कह सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये किसी भी इकोनॉमिक क्लास में हो सकती है, महिलाओं के अब्यूज जिसे हम कहते हैं, डोमेस्टिक अब्यूज, फिजिकल अब्यूज हो सकता है, मेंटल अब्यूज हो सकता है, फाइनेंशियल अब्यूज हो सकता है, जहां इवन उनके कमाए हुए पैसे भी उन्हें नहीं दिए जाते, बच्चों के लिए खर्चने के लिए पैसे नहीं है उनके पास। सो ये हर इकोनॉमिक क्लास में हो रहा है। इनफैक्ट जितने ऊपर के आपके मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास हैं, वो और ज्यादा कम उसको पुलिस में रिपोर्ट करते हैं क्योंकि वो, उनको बहुत शर्म होती है कि अगर पुलिस केस बन गया सोसाइटी में इज्जत खराब हो जाएगी। ना वो महिला रिपोर्ट करती है, ना फैमिलीज रिपोर्ट करती हैं। तो कोई महिला ऐसा भी कह सकते हैं कि पढ़ाई या आपका जो डिग्री है वो ये नहीं श्योरिटी देगी कि आप सेफ हैं कि नहीं हैं। बट हाँ, अगर आप खुद जागरूक हैं, आपको पता है आपके राइट्स क्या हैं, सरकार आपको क्या राइट्स दे रही है, और आप अपना मन मजबूत करके अपने बच्चे की रक्षा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो माएँ हम देखते हैं ऐसे केसेस में, बच्चों की रक्षा करना ज़रूरी है, अपनी रक्षा करना ज़रूरी है। और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप कमा सकते हैं, इसीलिए सिर्फ शिक्षा नहीं, शायद हमें ये जो मेंटल स्ट्रेंथ कहते हैं ये भी बच्चों को शुरू से देनी चाहिए।
0: यानी सकारात्मकता जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए।
1: बिल्कुल।
0: आप आज महिला दिवस पर महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं?
1: मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहूंगी, अगर आप एक महिला हैं तो आप दूसरी महिला को सपोर्ट करें
0: जी।
1: गलत चीज में नहीं, सही चीज में सपोर्ट करें
0: जी।
1: अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप उनको उनका सहारा बने बनने के लिए, और अगर आप पुरुष हैं तो आप भरोसा रखें कि आपके आसपास जो महिलाएं हैं वो आपको हेल्प भी कर सकती हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकती हैं और शायद आपका काम आसान कर सकती हैं बहुत जगहें। तो बस एक दूसरे की सपोर्ट कीजिए और एक दूसरे पर भरोसा रखिए, यही मैं आज का मैसेज देना चाहूंगी
0: आपको। यहाँ अम्बाला कैंट के FM 90.0 स्टूडियो में आके कैसा लगा?
1: अम्बाला से मेरी जड़ें बिल्कुल पक्की जुड़ी हुई हैं, चाहे मैं और शहरों देशों में भी रही हूँ, तो मुझे तो आज बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके, और ये बहुत बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा अपना अम्बाला का रेडियो स्टेशन है, और मेरे लिए गर्व की बात है कि आपने मुझे यहाँ इन्वाइट किया, ऑडियंस से बात करने का मौका दिया, तो मैं तो अपने आप को स्मॉल टाउन गर्ल ही मानती हूँ, यही हमें जब हम दूसरे शहरों में जाते हैं बोला जाता है, तो बिल्कुल बड़े खुश हैं हम स्मॉल टाउन गर्ल होके, और आपको बहुत सारी मेरी तरफ से बधाई, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स, खास करके डॉक्टर VK मल्होत्रा जी, हमारे मार्गदर्शक भी है और साथ में हमारे सबसे बड़े श्रोता भी हैं, वो हमें फीडबैक भी देते रहते हैं कि इस काम को अगर ऐसे करें तो शायद लोगों को ज्यादा पसंद आएगा, और हमें खुशी है कि उसी परिवार से एक और सदस्य, रेडियो वितस्ता परिवार की सदस्य आज बनी है, और आपने आज बहुत सारी जानकारी दी महिलाओं के लिए, ताकि जो काम आप कर रहे हैं, जो आप कोशिश कर रहे हैं, उसको हम इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं और उनको सचेत करें, उनको एक रास्ता दिखाएं, उनको एक दिशा दे पाएं। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाला, आप यहाँ पे आए और अपने बात रखी, और खास करके महिलाओं के उत्थान के लिए, और वो भी आज के खास दिवस पर जो कि इंटरनेशनल विमेंस डे है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद सपोरी जी, मुझे ये मौका देने के लिए आज बात करने का, और इन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी महिलाओं को शुभकामनाएं, और सभी महिलाओं के साथ जुड़े पुरुषों को भी शुभकामनाएं जो हमारे साथ रहते हैं, हमारा सहारा बनते हैं, और अम्बाला की ऑडियंस को मेरा प्यार भरा गुड बाय।
0: दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं किसी और कार्यक्रम में, तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
2: छूकर मेरे मन को।

सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए एपिसोड 8। हमारे आज के मेहमान थे दीपाली मल्होत्रा जी, निर्देशन और प्रस्तुतकर्ता भारत सोपोरी, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग दीपक कश्यप। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो मुतस्ता की पेशकश।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विथस्ता, हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

खातर अरियाणवी सोंग, करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

तो छु बोजन FM नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजान रूजिव पनिन पसंदीद बगत।

90.0 मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
2: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

90.0 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

अपना देश है, अपना देश है आज से, सब रहे थे लाज से, अपना देश है आज से, सब रहे थे लाज से, दूसरों के राज से, उनके तख्त ताज से, उनके तख्त ताज से कट गया।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विस्तार। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं, बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई, और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की, जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अंबा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था, और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अंबा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था, और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं, और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर के सी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें एक 63.5 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी, अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ, अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की, विरासत जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है, और भगवान वामन का एक मंदिर भी है जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारे जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार

0: श्रोताओ, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूँ विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हमसफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे।

पालाकेंड का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: डाच महल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

0: मन खातर अरियाणवी सोंग, करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।
1: घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो।
2: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
3: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को

0: दयाल बाग के राजा पधार रही है।
1: जोधवा श्री गणेश महोत्सव दयाल बाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अम्बाला छावनी में, तो पप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महाआरती का हिस्सा जरूर बनिए।
0: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं साई 7 बजे।
1: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
0: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 साई 8 बजे।
1: गणपति बप्पा मोरिया। आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का परवाह। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अन्नू, लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। आलू व मटर की अगेती फसल के लिए अभी तैयार करें खेत। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में करें बिजाई। बिजाई से पहले बीजो उपचार करें, जमाव अच्छा होगा। सितंबर के अंतिम सप्ताह में आलू और हरी मटर की अगेती बिजाई के लिए खेत तैयार कर लेना चाहिए। इस दौरान दिन का तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अक्टूबर के पहले सप्ताह में बिजाई शुरू कर दें। हरियाणा में आलू की खेती मुख्य रूप से उत्तर और मध्य हरियाणा के जिलों में होती है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के सब्जी विज्ञान विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार अरोड़ा के अनुसार, सही समय पर वैज्ञानिक तकनीक और उन्नत बीजों का चयन कर किसान सामान्य फसल से 20 से 25 दिन पहले पैदावार ले सकते हैं। मंडियों में शुरुआत में पहुंचने वाली उपज का भाव सामान्य दिनों के मुकाबले काफी ऊंचा मिलता है, जिससे किसानों की आमदनी में सीधा इजाफा होता है। खेत की तैयारी और भूमि उपचार। बलुई दोमट मिट्टी अगेती आलू और मटर दोनों के लिए सबसे अच्छी होती है। खेत की 2 से 3 बार जुताई करके पाटा लगाएं। अंतिम जुताई के समय प्रति एकड़ 8 से 10 टन गोबर की खाद में 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी मिलाकर मिट्टी में बिखेरें। इससे उखटा और जड़ गलने जैसी फफूंद जनित बीमारियां पूरी तरह खत्म हो जाती हैं। अगेता आलू 70 से 80 दिन में तैयार। उन्नत किस्में कुफरी पुखराज, कुफरी सूर्य और कुफरी खेयाती, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी मोहन, कुफरी पुष्कर अगेती फसल के लिए सबसे उपयुक्त है। ये किस्में 70 से 80 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। बीज चयन और उपचार। केवल 30 से 40 ग्राम वाले अंकुरित कंधों का ही चयन करें। बिजाई से पूर्व कंधों को 2 ग्राम मैंकोजेब या कार्बन डाइजिम प्रति लीटर पानी के घोल में 10 मिनट तक डुबोकर छाया में सुखाएं। मेड और कतार की आपसी दूरी। आलू को हमेशा मेड पर लगाएं। मेड की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और कंद की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखें। कंद को 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई में दबाएं। अगेती मटर 35 से 40 किलोग्राम बीज डालें। उन्नत किस्में पूसा प्रगति, काशी मुक्ति, आजाद P3 और GS10 प्रमुख किस्में हैं, जो 60 से 65 दिन में पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती हैं। बीजोपचार प्रति एकड़ 35 से 40 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। पहले TM या कैप्टन 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचार करें। इसके बाद राइजोबियम कल्चर का लेप लगाएं। इससे पौधों में नाइट्रोजन ग्रहण करने की क्षमता 20% तक बढ़ती है। बिजाई का तरीका, मटर को 30 सेंटीमीटर की कतारों में बोएं और पौधे से पौधे की दूरी 7 से 10 सेंटीमीटर रखें। बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर से अधिक गहरा ना दबाएं। ये सावधानियां बरतें। आलू की बिजाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें। डोरियों का 1/3 भाग पानी में डूबा होना चाहिए। खेत में पानी जमा ना हो, जल भराव से बीज गलने का खतरा 20% तक बढ़ जाता है। हरी मटर की बिजाई हमेशा जब जमीन में उचित मात्रा में नमी हो तब करनी चाहिए। उसके पश्चात पौधों पर हरी मटर के फूल और फल लगने की अवस्थाओं में पहली सिंचाई करनी चाहिए। गन्ने की फसल के साथ गोभी, धनिया और मेथी की बिजाई करें, बढ़ेगा मुनाफा। मध्य सितंबर के बाद शरदकालीन बिजाई का सही समय। गन्ने की शरदकालीन बिजाई के लिए मध्य सितंबर के बाद का समय सही है। गन्ने की बुआई पंक्तियों से पंक्ति के बीच 90 से 120 सेंटीमीटर की दूरी पर उपयुक्त अंतर फसलों जैसे लहसुन, फूलगोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी, धनिया, मेथी, अन्य सब्जियों के साथ बैंड पर की जा सकती हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी आर कंबोज ने कहा कि जिन किसानों ने गन्ने के साथ अंतर फसलें लगानी हैं, कम अवधि खड़ी और गैर फैलने वाली किस्मों को लगाना, दोनों फसलों की अनुशंसित खुराक को लागू करना, खरपतवार नियंत्रण के लिए दोनों फसलों के लिए सुरक्षित शाकनाशी का चयन करें, गन्ने का बेहतर अंकुरण सुनिश्चित करने के लिए बेड पर अंतर फसलों की बुआई के 5 से 7 दिन बाद खड्डों में हल्की सिंचाई करें। सोका रोग प्रबंधन के लिए फसल चक्र अपनाएं। HAU के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर महासिंह ने बताया कि सोका रोग के प्रबंधन के लिए 3 साल का फसल चक्र अपनाएं व स्वस्थ बीज का प्रयोग करें। तराई भेदक, जड़ भेदक व चोटी भेदक का जैविक नियंत्रण बहुत प्रभावी है। 1 एकड़ के लिए 1 ट्राइकोगार्ड प्रयोग करें, जिसे 24 टुकड़ों में काटकर खेत में छोटी छोटी दूरी पर अगोलों में डांके। अष्टपदी रेड माइट से बचने के लिए 600 मिलीलीटर रोगोर 30 ईसी को 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़कें। फसल से खरपतवार हटाएं। बारिश के बाद यूरिया डालें। गन्ने की फसल को खरपतवार मुक्त रखें। पछेती बिजाई में गन्ने को गिरने से बचाने के लिए मिट्टी ठीक से चढ़ाएं और सितंबर तक दूसरी बंधाई अवश्य कर लें। बारिश हो तो जल निकासी के बाद 25 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से 2.5% यूरिया का छिड़काव करें। लाल सड़न रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़ दें। CO0-238 किस्म लाल सड़न रोग के प्रति अति संवेदनशील है। इस बीमारी से ग्रसित पौधों को उखाड़ करके खेत से बाहर नष्ट कर दें व लाल सड़न रोग से ग्रसित खेत का पानी दूसरे खेत में ना जाने दें। पोका बोइंग रोग से पत्तियां पड़ जाती हैं पीली। पोका बोइंग रोग में पत्तियां हल्की पीली पड़ जाती हैं एवं उसमें धारियां बन जाती हैं और बाद में पत्तियां सिकुड़ व मुड़ जाती हैं। खेतों में पोका बोइंग रोग के लक्षण नजर आने पर कार्बेंडाइजिम 0.2% या प्रोपिकोनाजोल 0.1% की दर से स्प्रे करें। इसके अलावा गन्ने में सम्मट रोग के लक्षण जिसमें चाबुक समान संरचना बन जाती है दिखाई देने पर काटकर नष्ट कर दें, अन्यथा इसमें उपस्थित जीवाणु उड़कर अन्य पौधों को भी संक्रमित कर देंगे। इलेक्ट्रिशियन की नौकरी छोड़कर अपनाई जैविक खेती। 3.5 एकड़ में 6 फसलें उगा रहे 32 गांव में किसानों को जागरूक किया। बिना रासायनिक खाद धान, गेहूं, सरसों, चना, बाजरा व सब्जी लगाई। कभी दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 1500 रुपए महीना वेतन पर इलेक्ट्रिशियन की नौकरी करने वाले बंसीलाल आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। चिड़ी गांव निवासी बंसीलाल ने नौकरी छोड़कर खेती करने की ठानी। अब वह 3.5 एकड़ में जैविक खेती कर रहे हैं। बंसीलाल ने जैविक खेती के लिए 2013 में मध्य प्रदेश के छतरपुर जाकर 15 दिन की ट्रेनिंग भी ली। इसके बाद उन्होंने अपनी जमीन पर रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दिया। शुरुआती दिनों में लोगों ने उनके इस फैसले पर सवाल उठाए। बंसीलाल के पक्के इरादे रंग लाए। वह अपनी 3.5 एकड़ जमीन में बिना किसी केमिकल के धान, गेहूं, सरसों, चना, बाजरा और विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगा रहे हैं। बंसीलाल बताते हैं कि लोगों को जहर युक्त भोजन से बचाना ही जीवन का असली मकसद है। उनका मानना है कि आज बढ़ती गंभीर बीमारियों का सबसे बड़ा कारण हमारी थाली में मौजूद रासायनिक अवशेष है। जब किसान अपनी मिट्टी को बचाएगा तभी आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य सुरक्षित रहेगा। गोष्ठियों में फसल चक्र अपनाने की सलाह दी। बंसीलाल ने अन्य किसानों को भी जहर युक्त खेती के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। वह अब तक आसपास के 32 गांवों में किसान गोष्ठियों का आयोजन कर चुके हैं। इन गोष्ठियों के जरिए वे किसानों को जैविक खाद तैयार करने, फसल चक्र अपनाने और पेस्टिसाइड खेती करना सिखा रहे हैं। उनकी इस पहल से प्रभावित होकर कई स्थानीय किसान रासायनिक खेती छोड़कर जैविक खेती का मार्ग अपना रहे हैं। ये थे आज के कृषि समाचार। आशा करती हूँ आपको इन जानकारियों से लाभ होता होगा। अगर आपके पास कोई कृषि जानकारी है तो आप हमें हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं ताकि हम सभी श्रोताओं तक पहुंचा सकें। स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में। आप खुश रहें, उन्नत रहें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। समय समय पर हम आपके साथ अलग अलग योजनाओं के बारे में बात करते हैं जो भारत सरकार की ओर से हमारे देश के सभी देशवासियों के लिए होती है। आइए आज हम आपको जानकारी देते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। किसानों को 3 किस्तों में सालाना 6,000 रूपए देती है सरकार। किसानों की आय बढ़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रूपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के माध्यम से दिए जा रहे हैं। राशि 4-4 महीनों के अंतराल में 2,000 रूपए की 3 किस्तों में दी जाती है। ये दस्तावेज जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ दस्तावेज जरूरी है। किसान का नाम, आयु, लिंग, श्रेणी, SC/ST, आधार कार्ड, जमीन की फरद, पहचान पत्र के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड या केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार या उनके अधिकारियों आदि द्वारा जारी किए गए किसी भी पहचान दस्तावेज आदि, बैंक खाता संख्या और लाभार्थी का मोबाइल नंबर। ऐसे ले सकते हैं लाभ। योजना का लाभ लेने के लिए किसान pmkisan.gov.in यानी pmkisan.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने पर योजना का लाभ खाते में प्राप्त होता है। किसान यह आवेदन कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSS से भी करा सकते हैं। पात्र किसान पटवारी, राजस्व अधिकारी या अन्य नामित अधिकारी एजेंसी के पास जरूरी विवरण प्रस्तुत कर आवेदन कर सकते हैं। ये व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं है। इस योजना में कुछ लोग शामिल नहीं हो सकते। इनमें संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति, पूर्व या वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक, नगरपालिका चेयरमैन, जिला परिषद चेयरमैन, केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी और मासिक 10,000 रूपए से अधिक पेंशन लेने वाले ग्रुप डी के कर्मचारी पात्र नहीं होंगे। पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA और आर्किटेक्ट भी इस योजना से बाहर रखे गए हैं। इनके पास खेती की जमीन है तो भी सम्मान निधि का लाभ इन्हें नहीं मिलेगा। आयकर दायरे में आने वाले किसान भी योजना से बाहर रखे गए हैं। ये थी संक्षिप्त जानकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। समय समय पर हम आपको अलग अलग योजनाओं के बारे में जानकारी देते रहेंगे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता के माध्यम से। अब मुझे दीजिए इजाजत, कोई और जानकारी लेके आपसे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: कौन थी वो लड़की?
1: मैंने जब पूछा बोल तेरा नाम क्या, तो हंस के वो बोली नाम से है काम क्या। आई थी वो धम से, आई थी वो धम से, गई छम छम छम।

0: सामने वो देख रहे एक ट्रक आ रहा,
1: झूठ मत बोल, आ नहीं जा रहा,
0: देखो आँख मारे लाल लाल सिग्नल,
1: सिग्नल को तोड़ दो बात बड़ी सिंपल,

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्धजनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो

खींचा आ हा हा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आ हा हा

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विस्तार। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857 वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें,

0: याद रखेगा, यह सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
1: सत्तावन की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
2: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ, अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है, और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की, विरासत जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारे जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार रहती।

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। यह उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक, 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक। ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है, वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: थम सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
1: यू आर लिसनिंग FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: सुनिए नितिन मुकेश और सह कलाकारों की आवाज में दिल को छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज से रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: आपने ट्यून इन किया है सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज हम आपके साथ एक संवेदनशील विषय पर बात करना चाहेंगे जो हम सबके लिए ही बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा के सभी सामुदायिक रेडियोस के माध्यम से, गांवों वासियों के लिए, सरपंचों के लिए, सभी हरियाणा वासियों के लिए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अपने आसपास के वातावरण को बचा के रखिए।
1: एक छोटी सी जिम्मेदारी सबको बचा।
0: हरियाणा में खुले पड़े बोरवेल एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुकी है। आए दिन मासूम बच्चे खेलते खेलते इन गहरे गड्ढों में गिर जाते हैं, जिससे न केवल उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले की सांसें अटक जाती है। खेतों में बोरवेल को खुला छोड़ना एक प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं है बल्कि एक गंभीर अपराध है। सुरक्षा सर्वोपरि। हरियाणा में खुले बोरवेल का खतरा और कानूनी परिणाम। खेतों में सिंचाई के लिए बोरवेल खोदना किसानों की जरूरत है, लेकिन काम पूरा होने के बाद या बोरवेल के असफल होने पर उसे खुला छोड़ देना साक्षात मौत को दावत देने जैसा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से ऐसे कई दर्दनाक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां मासूमों को इन अंधेरे कुओं से निकालने के लिए सेना और NDRF को घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। बोरवेल को बंद रखना क्यों जरूरी है, कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूं। पहला, मासूमों की सुरक्षा। खुले बोरवेल सबसे बड़ा खतरा बच्चों और मवेशियों यानी पशुओं के लिए होते हैं। खेल कूद के दौरान या घास चरते समय इनमें गिरने का जोखिम हमेशा बना रहता है। दूसरा, मानवीय और आर्थिक नुकसान। एक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लाखों रुपए और प्रशासनिक ऊर्जा खर्च होती है। सबसे बढ़कर कई बार घंटों की मशक्कत के बाद भी बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती है, जो कि एक कभी ना भरने वाला घाव है। तीसरा, सतर्कता ही बचाव है। बोरवेल का काम खत्म होते ही उससे लोहे के मजबूत ढक्कन यानी कैप से ढकना, चारों तरफ कंक्रीट से पक्का करना और कटीली तारों की फेंसिंग करना बेहद जरूरी है। कानूनी प्रावधान और सख्त दंड। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन ने खुले बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ कड़े रुख अपनाए हैं। अगर कोई अपने खेत या प्लॉट में बोरवेल खुला छोड़ता है तो उसके खिलाफ निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं, जो पहले IPS के नाम से हम जानते थे। पहला, लापरवाही से जान जोखिम में डालना। खुले बोरवेल के कारण किसी की जान को खतरा पैदा करने पर लापरवाही का मामला दर्ज होता है। दूसरा, गैर इरादतन हत्या का मामला। यदि खुले बोरवेल में गिरने से किसी बच्चे या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जमीन के मालिक और बोरवेल खोदने वाली एजेंसी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बोरवेल खोदने से कम 15 दिन पहले जिला प्रशासन यानी DC या सरपंच को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर बोरवेल को तुरंत सील कर दिया जाता है। जमीन मालिक पर भारी प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाता है। हादसे की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव कार्य का पूरा खर्च भी दोषी जमीन मालिक से वसूला जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे कर्तव्य की। एक छोटी सी लापरवाही एक जिंदगी का अंत कर सकती है। यदि आपके आसपास या खेत में कोई ऐसा बोरवेल है जो इस्तेमाल में नहीं है तो उसे तुरंत मिट्टी, मलबे या कंक्रीट से ऊपर तक भर दें। अगर कोई मकान या जमीन मालिक कहने पर भी बोरवेल बंद नहीं करता है तो इसकी सूचना तुरंत अपने गांव के सरपंच, स्थानीय पुलिस या जिला प्रशासन को दें। सजग रहें और किसी मासूम की जान बचाने में अपना योगदान दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

विटस था, यही पैगाम पहुंचाए, खुला बोर मत छोड़ो, हर घर तक हर गांव तक आए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 MHz पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: आपने ट्यून इन किया है सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज हम आपके साथ एक संवेदनशील विषय पर बात करना चाहेंगे जो हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा के सभी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से, गाँव वासियों के लिए, सरपंचों के लिए, सभी हरियाणा वासियों के लिए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अपने आसपास के वातावरण को बचा के रखिए।
1: एक छोटी सी जिम्मेदारी सबको बचा।
0: हरियाणा में खुले पड़े बोरवेल एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुकी है। आए दिन मासूम बच्चे खेलते खेलते इन गहरे गड्ढों में गिर जाते हैं, जिससे न केवल उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले की सांसें अटक जाती है। खेतों में बोरवेल को खुला छोड़ना एक प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं है बल्कि एक गंभीर अपराध है। सुरक्षा सर्वोपरि। हरियाणा में खुले बोरवेल का खतरा और कानूनी परिणाम। खेतों में सिंचाई के लिए बोरवेल खोदना किसानों की जरूरत है, लेकिन काम पूरा होने के बाद या बोरवेल के असफल होने पर उसे खुला छोड़ देना साक्षात मौत को दावत देने जैसा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से ऐसे कई दर्दनाक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां मासूमों को इन अंधेरे कुओं से निकालने के लिए सेना और NDRF को घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। बोरवेल को बंद रखना क्यों जरूरी है, कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूँ। पहला, मासूमों की सुरक्षा। खुले बोरवेल सबसे बड़ा खतरा बच्चों और मवेशियों यानी पशुओं के लिए होते हैं। खेल कूद के दौरान या घास चरते समय इनमें गिरने का जोखिम हमेशा बना रहता है। दूसरा, मानवीय और आर्थिक नुकसान। एक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लाखों रुपए और प्रशासनिक ऊर्जा खर्च होती है। सबसे बढ़कर कई बार घंटों की मशक्कत के बाद भी बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती है, जो कि एक कभी ना भरने वाला घाव है। तीसरा, सतर्कता ही बचाव है। बोरवेल का काम खत्म होते ही उससे लोहे के मजबूत ढक्कन यानी कैप से ढकना, चारों तरफ कंक्रीट से पक्का करना और कटीली तारों की फेंसिंग करना बेहद जरूरी है। कानूनी प्रावधान और सख्त दंड। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन ने खुले बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ कड़े रुख अपनाए हैं। अगर कोई अपने खेत या प्लॉट में बोरवेल खुला छोड़ता है तो उसके खिलाफ निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं, जो पहले IPS के नाम से हम जानते थे। पहला, लापरवाही से जान जोखिम में डालना। खुले बोरवेल के कारण किसी की जान को खतरा पैदा करने पर लापरवाही का मामला दर्ज होता है। दूसरा, गैर इरादतन हत्या का मामला। यदि खुले बोरवेल में गिरने से किसी बच्चे या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जमीन के मालिक और बोरवेल खोदने वाली एजेंसी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बोरवेल खोदने से कम 15 दिन पहले जिला प्रशासन यानी DC या सरपंच को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर बोरवेल को तुरंत सील कर दिया जाता है। जमीन मालिक पर भारी प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाता है। हादसे की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव कार्य का पूरा खर्च भी दोषी जमीन मालिक से वसूला जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे कर्तव्य की। एक छोटी सी लापरवाही एक जिंदगी का अंत कर सकती है। यदि आपके आसपास या खेत में कोई ऐसा बोरवेल है जो इस्तेमाल में नहीं है तो उसे तुरंत मिट्टी, मलबे या कंक्रीट से ऊपर तक भर दें। अगर कोई मकान या जमीन मालिक कहने पर भी बोरवेल बंद नहीं करता है तो इसकी सूचना तुरंत अपने गांव के सरपंच, स्थानीय पुलिस या जिला प्रशासन को दें। सजग रहें और किसी मासूम की जान बचाने में अपना योगदान दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास

9930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
1: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयालबाग के राजा पधारे हैं।
0: चौदवा श्री गणेश महोत्सव दयालबाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अम्बाला छावनी में। तो पप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महाआरती का हिस्सा जरूर बनिए।
1: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं सायं 7 बजे
0: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
1: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 सायं 8 बजे
0: गणपति बप्पा मोरिया।

0: ताज महल। एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: ही दालच महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

जब जहां से फरेब खाता हूं मां को अपने करीब पाता हूं, अपने ऐब हुनर छुपाता हूं मां को तालीम घर सा पाता हूं। सारा कुंबा है सिर्फ मां ही नहीं, खुद को कितना यतीम पाता हूं। मारती और खुद भी रोती थी, मां ही रब है तुम्हें सुनाता हूं। मां किसी की ना किसी से बिछड़े, रब से यही दुआ मनाता हूं। कोई पूछे कि रब को देखा है, मां की तस्वीर दिखाता हूं। आरती हो या मस्जिदों से अजां, ये सदा मां की ही बताता हूं। मां अनमोल होती है, मां का कोई पर्याय नहीं। ये शब्द जिस महानुभाव ने उकेरे हैं, उनसे हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे आज के कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 5 में। मुलाकात उनके लिखे गीत गजलों के माध्यम से। आज का कार्यक्रम आधारित है एक शिक्षा विद्वान जिनके नाम 15 पुस्तकों का काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है, और ये है सीहोर मध्य प्रदेश से आदरणीय धर्मराज देशराज। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, और आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। बने रहिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में, सुनाते हैं आपको और गजलें। पहले माँ के नाम ये गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। कार्यक्रम चल रहा है विदस्ता गीतमाला एपिसोड 5। श्री धर्मराज देशराज जी के काव्य संग्रह हूँ गजल के फूल, गजल जिंदगी है, सुबह तक गजल पर वो लिखते हैं, लहू जब दिल का बहाती है आंखें, छुपा दर्द दिल का सुनाती है आंखें, भला इससे बढ़कर करामात होगी, कई ख्वाब दिन में दिखाती हैं आंखें, यकीनन ही दिल से वो मजबूर होंगी, इशारे से जब भी बुलाती हैं आंखें, कभी शर्म से देखना छुप छुपा कर, कभी सोए अरमां जगाती हैं आंखें, कभी तो बरसती है बेखौफ होकर, कभी पास आकर लज जाती हैं आंखें, जमाने में आंखों से बढ़कर नहीं कुछ, ये एहसास रब का कराती हैं आंखें। धर्म, अपनी आंखों में रब को बसा लो, कई जुर्म हमसे कराती हैं आंखें।

धर्मराज देशराज जी लिखते हैं, आपके दिल में मेरे सिवा कौन था, मैं नहीं था अगर तो भला कौन था, डूबने से बचाया यही कम नहीं, अब खुदा कौन था ना खुदा कौन था, फर्क साकी ने कुछ न किया बज्म में, कौन खुशहाल था गमजदा कौन था, जिसने हंसना सिखाया मैं सोचूं उससे, आदमी कौन था और खुदा कौन था, दोरे गर्दिश में जिसने दिया हौसला, उस समय मेरे रब के सिवा कौन था, हाथ दिल पर जरा रख के सच सच बता, चाहता कौन था पूजता कौन था, जिसने जख्मों पे नश्तर चलाए धर्म, पूछते हैं वही बेवफा कौन था।

धर्मराज देशराज जी लिखते हैं, अभी तो जख्म दिखलाने के दिन है, मोहब्बत क्या है समझाने के दिन है, गरीबी मत चुरा बचपन हमारा, हमारे खेलने खाने के दिन है, चलो दुश्मन से कर लें दोस्ती हम, यही तो होश में आने के दिन है, मोहब्बत नामे रब है इस जहां में, यही दुनिया को समझाने के दिन है, अभी गर्दिश में तारे हैं हमारे, अभी यारों के मुस्काने के दिन है, जमाने भर का मालिक एक ही है, यही तो बात मनवाने के दिन है। धर्म, तालीम घर में डांटना मत, मोहब्बत से ही समझाने के दिन है।

धर्मराज देशराज जी आगे लिखते हैं, जो गजल आपको सुनाई थी जिंदगी भर की वो कमाई थी, उनको हमने भुला दिया कब का, भूल जाने में ही भलाई थी। दर्द दिल में था आंख में आंसू, मुस्कुराने में जग हंसाई थी। मौत से क्या गिला करें आखिर, जिंदगी चीज ही पराई थी। अश्क आंखों में आ गए मेरी, उसने इतनी खुशी जताई थी। वो ख्यालों में आ गए आखिर, दिल ने आवाज भर लगाई थी। बेवफा को धर्म सुना छिप कर, उसके लब पर मेरी रुबाई थी।

धर्मराज देशराज जी लिखते हैं, हमने जब अपना फायदा देखा, खुद की नजरों से खुद गिरा देखा, हमने जब जब भी आईना देखा, आंख में खून का बुलबुला देखा, एक दूजे पे जान दे देना, इश्क का यही कायदा देखा, बिन कहे वो पुकार सुनता है, हमने ऐसा भी फलसफा देखा, मेरी हस्ती मुझे मालूम हुई, जब सितारे का टूटना देखा, उनको हंसने में लुत्फ आता है, हमने रोने में भी मजा देखा, चंद सिक्कों में बिक गए सारे, मेरे अपनों को क्या से क्या देखा।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 5। आज का एपिसोड आधारित था श्री धर्मराज देशराज जी के काव्य संग्रहों गजल के फूल, गजल जिंदगी है व सुबह तक गजल पर। रिकॉर्ड, एडिट, निर्देशित व प्रस्तुतकर्ता भारत सपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पे।

0: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं, बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई, और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की, जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था, और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था, और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं, और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर के सी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें एक 63.5 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ, अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार।

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूँ विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता हमसफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

सिर्फ पानी पी खींची लकीरें, इंद्रधनुष की धूप रेतीली आशियानी, वहमो गुमा की बुनियाद पे खड़े, उम्र के इस पड़ाव पे तुम्हारे लौटने की उम्मीद सी जगी है।

जब दो रानी सफर पीले पत्तों के मौसम में तुम्हारी मासूम मुस्कान भरी अदाएं शामिल हों। ए रुको मत जाओ, यूं ही हमें छोड़कर बेवजह। कभी कभी साथ तो चले इन काली घटाओं के हमराह, अपनी नींदों के बादल शायद भीग जाएं।

मौसम है सर्द, बर्फीली हवाओं का एहसास। खामोश वादी में माजी कुछ कहना चाहता है, मुझको मुझे से अलग करना चाहता है। रूह की फरियाद यहां सुने कौन, क्या बीते पल लौट आएंगे, क्या समय की इन तेज धाराओं से हमें भी गुजरना होगा। साथ चलने का वादा निभा न सके, पास रहने की हसरत लिए बैठे हैं।

जाने ये कौन मेरी रूह को छू कर गुजरा, हमेशा मेरे साथ रहते भी कभी मेरे पास न रह सके। जाने ये कौन इन गुप अंधेरों में अपनी नर्म नाजुक मुलायम उंगलियों से मेरे बालों को सहलाते गए। देर रात तक मुझे अपने आंचल में छिपाते गए। माजी की यादें सुनाकर रुलाते गए। कटा कटा सा जीवन धुंधले ख्वाबों के आगोश में तुम्हें तलाशने की नाकाम कोशिश, पर ये ख्वाब बनते हैं शायद टूटने के लिए, हाँ सिर्फ टूटने के लिए।

मैं कई युगों से बैठा हूं, चांद से कोई उतरा नहीं। तुमने जो कहा था आऊंगी, तुम्हारे चौखट से गुजरूंगी, रखूंगी कदम दहलीज पर, तुम्हें आवाज दूंगी, बुलाऊंगी और ले जाऊंगी अपने साथ दूर दूर बादलों के उस पार, जहां मौजूद हैं हमारी बस्तियां, हैं वहां हमारे अपने तुम्हारे ही तरह। पर बैठा हूं कई युगों से इंतजार में, लेकिन लेकिन चांद से कोई उतरा।

बरसती बादल, झूमती हवाएं, भीगती मुस्कान, ये खूबसूरत सुबह जीवन संघर्ष की डगर पर गामजन, उम्मीदों का लिबास पहने हुए, हसरते ही किसी का साथी ना छूटे। कोई किसी के जज्बात से ना खेले, एहसास मोहब्बतों का यूं ही बरकरार

कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे, आओ चल के बीते दिनों की छाँव में बैठें, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें कोई फूल खिला था, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी आवाज की चांदी खनक उठी थी, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी की नजरों के मोती बरसे थे। कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे।

सच तो ये है कसूर अपना है, चांद को छूने की तमन्ना की, आसमां को जमीन पर मांगा, फूल चाहा के पत्थरों पे खिले, कांटों में की तलाश खुशबू की, आरजू की कि आग ठंडक दे, बर्फ में ढूंढते रहे गर्मी, ख्वाब जो देखा चाह सच हो जाए, इसकी हमको सजा तो मिलनी थी, सच तो ये है कसूर अपना है।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक हमें भेजेंगे हमारे कार्यक्रमों के बारे में और अपने सुझाव भी भेजेंगे। हम हमेशा आपके सुझावों का इंतजार करते हैं, और हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप क्या सुनना चाहते हैं, किन किन लोगों के साथ बातचीत आप सुनना चाहते हैं। अगर आप भी किसी खास व्यक्ति की बात सुनना चाहते हैं जो हमारे इस सामुदायिक रेडियो से ब्रॉडकास्ट नहीं होती, तो आप उनके बारे में भी हमें ज़रूर लिखें। हम उन्हें आमंत्रण देंगे, स्टूडियो में बुला के उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर आप तक पहुंचाएंगे। नंबर आपको हम अभी भी बता देते हैं, और आखिर में भी हम आपको नंबर हर दिन नोट कराते हैं। हमारा नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा, और आज के लिए बस इतना ही। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01:20। आज का ये प्रसारण अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। उम्मीद करते हैं कि वितस्ता की निर्मल धारा की तरह ये प्रसारण भी आपके दिल को छू गया होगा और आपके दिन में थोड़ी मिठास घोल गया होगा। दोस्तों, आज का दिन एक विशेष और पावन अवसर लेकर आया है। आज है राधा अष्टमी। हिंदू पंचांग के अनुसार भद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी के प्रकट उत्सव के रूप में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। विशेषकर मथुरा, वृंदावन और समूचे ब्रज क्षेत्र में आज के दिन विशेष अनुष्ठान, पूजा अर्चना और भव्य उत्सवों का आयोजन होता है। FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता की पूरी टीम की ओर से आप सभी श्रोताओं को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी शुभ अवसर पर दोस्तों आज बात करते हैं एक बेहद सुंदर विषय, प्रेम और समर्पण ही सच्ची भक्ति की पहचान है। राधा रानी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम कोई स्वार्थ नहीं जानता, वो केवल देना जानता है बिना किसी अपेक्षा के। उनका समर्पण, उनकी निष्ठा और उनकी भक्ति आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जीवन में जब हम किसी भी कार्य को, किसी भी रिश्ते को पूरी मन से, समर्पण भाव से निभाते हैं, तभी उसमें सच्ची सार्थकता आती है। आज के इस भागदौड़ भरे युग में जहां रिश्ते अक्सर स्वार्थ और सुविधा पट्टी के नजर आते हैं, वहां राधा कृष्ण का प्रेम हमें याद दिलाता है कि निस्वार्थ प्रेम, विश्वास और समर्पण ही किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी मजबूत नींव होते हैं। ये भगवान केवल आध्यात्मिक जीवन के लिए नहीं, बल्कि हमारे पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आइए आज के इस पावन दिन पर हम ये संकल्प लें कि अपने जीवन में प्रेम, विश्वास और समर्पण के इन्हीं मूल्यों को अपनाएंगे, ताकि हमारे रिश्ते और अधिक मधुर और मजबूत बन सकें। जी हाँ दोस्तों, ये था आज का विषय, और एक बार फिर आपको राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। हम हर दिन आपके लिए कुछ पंक्तियां ले आते हैं, और आज के लिए भी 4 पंक्तियां आप सभी के नाम। आज की पंक्तियां यूं है, वितस्ता की धारा में बसी है एक सीख गहरी। वितस्ता की धारा में बसी है एक सीख गहरी, हर बाधा को पार कर जो बढ़े वही राह असली। हर बाधा को पार कर जो बढ़े वही राह असली। जिंदगी भी यूं ही चलती रहे बिना थके बिना डरे। जिंदगी भी यूं ही चलती रहे बिना थके बिना डरे, तभी मिलती है मंजिल जब हिम्मत हो दिल में भरी। तभी मिलती है मंजिल जब हिम्मत हो दिल में भरी।

जी हाँ दोस्तों, ये थे आज की पंक्तियां, और जाते जाते आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण। कल है रविवार, छुट्टी का दिन है। कल 20 सितंबर 2024 को जो कार्यक्रम हम लाए हैं आपके लिए वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होती है 5:58 पर वंदे मातरम से, और लाएंगे आपके लिए एक सुविचार। और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं पंचांग के साथ। 8 बजे आप रविवार को सुनते हैं तुम्हें याद है कि ना याद है। कल इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको हसरत जयपुरी के बारे में बात करेंगे और पेश करेंगे रमेश मराठा। 8:30 बजे किडनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट का 14वां एपिसोड परिवार के मायने होगा, शीर्षक पेश करेंगे आरजे किडनी। 9:30 बजे फिल्मी किसे एपिसोड 2 कटी पतंग, हमने कल के लिए फिल्म चुनी है, पेश करेंगे दीपक कश्यप। और 10 बजे काव्य गोष्ठी एपिसोड 4, हमारे साथ होंगी मिसेज सवीना वर्मा, पेश करेंगे भारत सोपोरी। संगीत की सभा जारी रहेगी 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 बजे शाम गजल, 7 बजे पुनः प्रसारण तुम्हें याद हो कि ना याद हो हसरत जयपुरी का, और 7:10 पर होगा कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 15, पेश करेंगे आरजे किरणी। और 8:30 बजे हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है शमशाद बेगम एवं राजेंद्र कुमार। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का। आप अपना फीडबैक, अपनी जानकारी, अगर आप हमारे स्टूडियो में अंबाला के लोगों को कुछ मार्गदर्शन करना चाहते हैं अपने अनुभव अपने एक्सपीरियंस से, तो हमें लिखिए हमारे नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। ये सारी जानकारी टीम रेडियो वितस्ता का कैजुअल अनाउंसर अनु ने आपके लिए तैयार की, जो मैंने आप तक पहुंचाई। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रसारण पसंद आया होगा और इसने आपके दिन को और सुहावना बनाया होगा। मैं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा। FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और कल सुबह तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।